अय्या करूं मैं क्या सुकू सुकू खो गया दिल मेरा सुकू सुकू अय्या।

0: को मत ऐ दोस्तो यूं ही मुझसे मत डरो, मेरे भोले प्यार को नादानी ना समझो। हाथों में जो हाथ है जीवन भर का साथ है, सीधी सच्ची बात है कहानी ना समझो।
1: अय्या सुकु सुकु
0: अय्या करूं मैं क्या, सुकु सुकु खो गया दिल मेरा, सुकु सुकु।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
2: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
1: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
2: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
1: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
2: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
1: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ आर्याना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गरम और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ, और सारे इंग्रेडिएंट्स आर्याना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
3: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रابطہ करें 0115-929-8484 या 0770210793।
4: आर्याना सुपरमार्केट, 126132 ग्रैसिंगटन रोड, NG8 3P, नॉटिंघम, मंडे टू सैटरडे 8 AM to 8 PM, संडे 10 AM to 8 PM। आर्याना सुपरमार्केट, फ्रेशनेस यू कैन ट्रस्ट, प्राइसेस यू'ल लव।
5: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
6: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
5: अरे जाने दें, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
6: आय हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
5: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
6: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
7: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
5: Park Foods, जो नाम है मायार का।
8: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasser, Students Learning and Skills Academy.
9: रोज रोज सेम रूटीन से बोर हो गए हैं,
10: तो अब वक्त है अपना मूड चेंज करने का।
9: वेलकम टू मूड रेस्टोरेंट, जहां हर बाइट के साथ मिलता है परफेक्ट टेस्ट और परफेक्ट वाइब्स।
10: चाहे हो फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट, फैमिली डिनर या मी टाइम, मूड रेस्टोरेंट है हर ओकेजन के लिए परफेक्ट।
9: Delicious premium steak, juicy burgers, creamy pastas और fresh drinks, सब कुछ एक ही जगह।
10: क्योंकि जब खाना हो जबरदस्त तो मूड खुद ही बन जाता है।
9: तो आज ही विजिट करें मूड रेस्टोरेंट, moodnottingham.com, 948 Woodsboro Road, Nottingham, NG35QS।
10: हर दिन को बनाएं स्पेशल मूड रेस्टोरेंट,
9: टेस्ट भी, वाइब भी।
11: सुनते रहिए रेडियो फजा 97.1 FM।

क्या आप जानते हैं मैं कौन हूँ? मेरा नाम है फजा। रोजो शब के धारे में, सुबह शाम के तारे में, वक्त के हमरा चलते हुए, मालूमात भी देते हुए, शोही हूँ, शरारत हूँ, संजीदा हूँ, महारत हूँ। अपनी उदासी दूर करें, बिजनेस को मशहूर करें, आइए आकर मुझसे मिलें। मेरा नाम है रेडियो फजा।

0: so hot. ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: यूके की सबसे बड़ी चांद रात मल्टीकल्चरल ईद फेस्टिवल आ रही है एक ग्रैंड अंदाज में। सेलिब्रेट करें ईद उल अधा फैमिली, फूड, शॉपिंग और जबरदस्त एंटरटेनमेंट के साथ। लाइव कवाली परफॉर्मेंस पाए उस्ताद रफाकत अली खान 26 मई 2026 शाम 6 बजे से लेट नाइट तक। बकरा मुबारक 2026 ब्रिंगिंग ट्रेडिशन टू लाइफ। डिटेल्स या बुकिंग के लिए अभी कॉल करें 07715299779 या 07552538250। बकरा मुबारक चांद रात मल्टीकल्चरल ईद फेस्टिवल 2026।
2: Attention, property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Fire Safety Solutions, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring you stay compliant with the Regulatory Reform Order 2005 by providing you with a professional risk assessment service. At Elite Care Fire Safety Solutions, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Fire Safety Solutions today at 077 30 791 412, or visit our website www.ecfss.com to secure a no obligation quote today.
3: राहिला बहन, बहुत बहुत मुबारक हो। आपके बच्चों ने GCSE और SATs एग्जाम्स बड़े अच्छे नंबरों से पास किए हैं।
4: भाई मुबारक तो हो सलासा ट्यूशन सेंटर वालों को, जिनकी मेहनत से बच्चों ने GCSE मैथ्स, इंग्लिश और साइंस में ए स्टार्स और SATs में ग्रेटर डेप्थ हासिल किए हैं।
3: सलासा ट्यूशन सेंटर?
4: जी हाँ, इनकी एक ब्रांच न्यू बेस्फोर्ड NG7 7FY और दूसरी ब्रांच स्नेंटनडेल NG2 4LG में है।
3: लेकिन मैं तो यूनिवर्सल क्रेडिट पे हूँ और फुल ट्यूशन फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकता।
4: मसला ही कोई नहीं, सलासा ट्यूशन सेंटर नॉटिंघम ऑफ स्टेट रजिस्टर्ड है और यूनिवर्सल क्रेडिट वालों के लिए 85% डिस्काउंट अवेलेबल है।
3: फिर तो मैं आज ही उनसे रापता करता हूँ।
5: जी हाँ, आज ही रापता कीजिए सलासा ट्यूशन सेंटर 07968046444 या 01159168231। कुछ बन गए आज तो कल काम आएगा।
6: Planning to upgrade your home or business space? Whether it's a brand new kitchen, a stylish bathroom, or a complete makeover, Mogul Builders are the experts you can rely on. From kitchen fitting and worktops, bathroom tiling, fitting and renovations, painting and decorative finishes, laminate, vinyl, and wooden flooring, to plastering, dry lining, and minor building work. Mogul Builders handle it all, from start to finish. Clean work, quality finish, fair prices. Call 07440-363063 or 07421-077999 for a free consultation and quote. Mogul Builders, transforming spaces, building trust.
7: आप सुन रहे हैं फजा 97.1 FM।
8: You are listening 97.1 FM.

0: इट्स कमर्शियल टाइम।
1: तू को जा मन को जा।
2: रूह को महका देने वाली एक यादगार शाम, लाइव कव्वाली परफॉर्मेंस, गेस्ट ऑफ ऑनर उस्ताद रफाकत अली खान एंड हमनवा ऑन स्पेशल इवेंट बकरा मुबारक 2026। इश्को सुरूर की महफिल कव्वाली नाइट 26 मई 2026 शाम 6 बजे से रात गए तक। तशरीफ लाना मत भूलिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। एक्सेलसियर नवाब, लोटस रोड, नॉटिंघम, NG5 1EL। फॉर डिटेल्स प्लीज कॉन्टेक्ट 0771529779 और 0755253825 0। UK's biggest multicultural Eid festival, Bakra Mubarak 2026.
3: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
4: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
3: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
4: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
3: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताज़ा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
4: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
3: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्रे पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताज़ा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गए की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्रे पिज्जा
5: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
2: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रابطہ करें 0115-929-8484 या 0770210793।
6: Ariana Supermarket, 126132, Grassington Road, NG8 3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
7: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
8: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
7: अरे जाने दे, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
8: आय हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
7: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
8: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
9: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG2 4HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG7 6LW।
7: Park Foods, जो नाम है मायार का।
10: Discover the authentic taste of the Middle East at Mariah Restaurant in Tooting with a breakfast experience full of rich Arabic flavors. Enjoy freshly baked manish straight from the oven, topped with delicious melted cheese, warm traditional breads, creamy hummus and crispy fresh falafel prepared daily.
11: And when you're ready for something truly unforgettable, treat yourself to Mariah's signature dish, the legendary Especial Mandi, slow-cooked, aromatic and rich with traditional spices.
10: From breakfast and brunch to lunch, dinner and takeaway, Mariah Restaurant brings quality food and excellent service together under one roof. Open daily from 9:30 a.m. till 10:30 p.m.
11: Visit us at 136-138 Alfreton Road, Nottingham.
10: Or place your order today on 0759-315-0669. Mariah Restaurant.
12: You are listening 97.1 FM.

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: ओए खुशियाँ मनाओ, भंगड़े पाओ, भंगड़े पाओ, भंगड़े पाओ, भंगड़े पाओ।
2: आज तो बहुत खुश लग रहे हैं, खैर तो है।
1: मेरी बीवी का वीजा हो गया जी।
2: ओहो मुबारकबाद, बहुत जल्दी आ गया।
1: सारी नसीब दी गल है, मैं लोकल वीजा मायरीन दी मदद लई सी जी।
2: उनका नाम ही बता दें, हमें भी कभी जरूरत पड़ सकती है।
1: AMH सॉलिसिटर्स। और कौन? ओ वधिया ने, दोस्ताना माहौल, तेज ते जल्दी काम कर दे रहे। सोने ते स्वागा ये कि हर तरह का वीजा एक्सटेंशंस, इनडेफिनेट लीव टू रिमेन और सिटीजनशिप एप्लीकेशंस भी कर देने।
2: चलें उनका पता भी बता दें, आपको तो जुबानी याद होगा।
1: हाँ जी क्यों नहीं, नॉटिंगम रोड, न्यू बेसफोर्ड, नॉटिंगम।
2: जबरदस्त, मैं उनसे राबता करूंगी अपनी फैमिली के वीजा के लिए। नंबर क्या है?
1: लो जी ओ भी जुबानी याद है, 01156713677। प्योर जिम दी बिल्डिंग विच ने, मुफ्ता मशवरा लो जी।
3: AMH Solicitors, Immigration Lawyers at Sovereign House, 184 Nottingham Road, New Basford, Nottingham NG7 7BA. Large free car park available, or call them on 01156713677.

0: ईद उल अधा की खुशियों को ग्रैंड स्टाइल में सेलिब्रेट करें। ZK Events और रेडियो फजा ला रहा है इस चांद रात को जबरदस्त इवेंट, बकरा मुबारक 2026, एक यादगार चांद रात एक्सपीरियंस। 26th of May, 6 PM till late, सिर्फ शॉपिंग नहीं पूरी फैमिली के लिए एंटरटेनमेंट का धमाका। फूड स्टॉल्स, फैमिली फन, ईद वाइब्स और नॉन स्टॉप एक्साइटमेंट। तो इस चांद रात मिलते हैं बकरा मुबारक 2026 में, एक्सेलसियर नवाब, लोटस रोड, नोटिगम, NG5 1EL।
1: बड़ी ईद की बड़ी खुशियों में आपके साथ साथ मराया रेस्टोरेंट। मराया रेस्टोरेंट की जानिब से तमाम अहले नोटिगम को बड़ी ईद की बड़ी खुशियां बहुत बहुत मुबारक। तकबलुल्लाहि मिन्ना व मिनकुम।
2: Planning a wedding, reception, or special celebration? Discover Excelsior Nawab, Nottingham's brand new renovated banqueting venue. A beautifully designed indoor marquee concept featuring sparkling traditional chandeliers, stunning LED lighting throughout, and elegant decor.
3: Enjoy venue hire, tables and chairs with table linen, chair covers, centerpieces, stage and walkway decor, a delicious three-course meal, drinks, professional waiter service, and a dedicated supervisor on the day.
2: Fully air-conditioned, with modern kitchen facilities, a spacious foyer reception area, located just 1 mile from Nottingham City Center at 5-7 Lourdes Road, NG51EL.
3: Excelsior Nawab. Where your special moments become unforgettable.
4: This is a public service announcement.
5: The station.
6: That plays
7: foot tapping music.
8: Hazar 97.1 FM.
9: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन।
10: You are listening 97.1 FM.

0: It's commercial time.
1: हेलो नॉटिंघम, हम एक डेडिकेटेड लोकल डॉक्टर और यंग फादर के लिए एक अर्जेंट स्टेम सेल डोनेशन की अपील कर रहे हैं, जो इस समय अपनी जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। उन्हें अर्जेंटली एक लाइफ सेविंग स्टेम सेल ट्रांसप्लांट की जरूरत है, लेकिन अफसोस अभी तक उनका साउथ एशियन मैच कहीं नहीं मिला है। हम पूरी साउथ एशियन कम्युनिटी से गुजारिश करते हैं कि प्लीज आगे आएं और इस फादर की मदद करें। हम एक डोनर ड्राइव होस्ट कर रहे हैं ICCA सेंटर हकनल रोड पर ऑन वेंसडे 27 मई को शाम 6 बजे से 7:30 बजे तक। हम आपका एक चीक स्वाब लेंगे मुंह के अंदर से और फिर उसे टेस्टिंग के लिए भेज देंगे। हमें उम्मीद है कि आप वेंसडे आकर इस फैमिली की मदद जरूर करेंगे। शुक्रिया।
2: चांद रात की शॉपिंग अब होगी और भी जबरदस्त। कपड़े, ज्वेलरी, मेहंदी, ईद एक्सेसरीज, सब कुछ एक ही जगह। बकरा मुबारक 2026 UK का बिगेस्ट मल्टी कल्चरल ईद फेस्टिवल। अपनी फैमिली के साथ जरूर आएं। 26th of May 2026 शाम 6 से रात गए तक। एक्सेलसियर नवाब, लोटस रोड, नॉटिंघम, NG5 1EL। फॉर डिटेल्स कॉन्टेक्ट 07715299779 और 07552-538250.
3: Attention property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Training Academy, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring compliance and safety. At Elite Care Training Academy, we specialize in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704 135 or 07541 181 746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.
4: जी नासिर साहब, सुनाइए कैसे हैं आप और कहां तक पहुंची आपकी दुकान की रेनोवेशन?
5: बिल्कुल ठीक हूं यार, लेकिन दुकान की रेनोवेशन तो कंप्लीट हो चुकी है, बट कोई यार ना फिनिशिंग ना कोई क्वालिटी वर्क, बस मजा नहीं आया। अब सोच रहा हूं कि घर को अपग्रेड करना है, रेनोवेशन का काम है, किससे रابطہ किया जाए?
4: आपने मुगल बिल्डर्स का नाम नहीं सुना?
5: मुगल बिल्डर्स?
4: जी हाँ, मुगल बिल्डर्स। चाहे नया किचन हो, मॉडर्न और स्टाइलिश बाथरूम या फिर पूरा मेकओवर, मुगल बिल्डर्स हैं वो एक्सपर्ट्स जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं।
6: जी, मुगल बिल्डर्स किचन फिटिंग और वर्कटॉप से लेकर बाथरूम टाइलिंग, फिटिंग्स और रेनोवेशंस, पेंटिंग और डेकोरेटिव फिनिशेस, लेमिनेशन, विनाइल और वुडन फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, ड्राई लाइनिंग और जो भी काम बिल्डिंग से रिलेटेड हो, करते हैं ना मुगल बिल्डर्स।
4: मुगल बिल्डर्स स्टार्ट से फिनिश तक सब कुछ करते हैं।
6: मुगल बिल्डर्स, साफ सुथरा काम, बेहतरीन फिनिशिंग और मुनासिब दाम। तो अभी कॉल करें 07440-36-3063 या 07421-077999 पर फ्री कंसल्टेशन एंड कोट।
4: मुगल बिल्डर्स, जगह बदले, भरोसा तामीर करें।
7: दिस इज अ पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट।
8: यू आर लिस्टिंग 97.1 FM।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: जी हाँ, मराया रेस्टोरेंट में मिडल ईस्ट के असली जायके के साथ अपना दिन शुरू करें। सुबह का आगाज ऑथेंटिक अरेबिक ब्रेकफास्ट के साथ, फ्रेश बेक्ड ज़ातर ब्रेड जो पिघले हुए चीज के साथ और भी लजीज हो जाए, गर्मा गर्म रोटी सीधी ओवन से, क्रीमी हुमस और ताजा तैयार की हुई फलाफिल जो हर बाइट में फ्लेवर से हो भरपूर। और जब आप कुछ वाकई ही यादगार खाना चाहते हो तो जरूर ट्राई करें मराया रेस्टोरेंट की स्पेशल सिग्नेचर डिश लेजेंडरी स्पेशल मंदी, स्पेशली कुक्ड फॉर अनबीटेबल टेस्ट, खुशबूदार और रिवायती मसालों से भरपूर। चाहे ब्रेकफास्ट हो, ब्रंच, लंच, डिनर या टेक अवे, मराया रेस्टोरेंट हर दफा लाजवाब जायके और बेमिसाल सर्विस के साथ। रोजाना टाइमिंग सुबह 9:30 से रात 10:30 तक। विजिट करें 136-138 अल्फ्रेड डेंटन रोड नॉटिंघम या अभी राब्ता करें 0759315069। मराया रेस्टोरेंट, जहां हर मील बन जाता है एक यादगार लम्हा।
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपर मार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपर मार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
4: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
2: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
5: Ariana Supermarket, 126132, Grassington Road, NG8 3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
6: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11+, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasa, Students Learning and Skills Academy.
7: ख्वाबों जैसी शादी का ख्वाब अब हकीकत में बदलने वाला है। आपकी खुशियों के हसीन लम्हे यादगार बनाने के लिए हयात वेडिंग डिकोर हाजिर है। जदीद तरीन थीम्स, शानदार सेटअप, संगीत, मेहंदी, वेडिंग रिसेप्शन, होम एंड वेन्यू, निकाह पार्टीशन, सेंटर पीसेस, वेलकम साइन, एंगेजमेंट, हाउस लाइटिंग, वॉक अवे, डांस फ्लोर और आपकी पसंद के मुताबिक सजावट, वो भी आपके बजट में। तो देर किस बात की, अभी रابطہ करें हयात वेडिंग डेकोर से और अपनी शादी को बनाएं एक शानदार याद। मजीद मालूमात के लिए कॉल करें 07715 2।
8: यू आर लिस्टिंग 97.1 FM।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
2: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
1: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
2: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
1: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या है यार? सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताज़ा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
2: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
1: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताज़ा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
3: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी राब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
4: अरियाना सुपरमार्केट, 126132 ग्रैसिंगटन रोड, NG8 3P, नॉटिंघम, मंडे टू सैटरडे 8 AM to 8 PM, संडे 10 AM to 8 PM। अरियाना सुपरमार्केट, फ्रेशनेस यू कैन ट्रस्ट, प्राइसेस यू'ल लव।
5: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
6: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
5: अरे जाने दे, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
6: आय हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
5: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
6: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
7: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
5: Park Foods, जो नाम है मायार का।
8: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasa, Students Learning and Skills Academy.
9: रोज रोज सेम रूटीन से बोर हो गए हैं,
10: तो अब वक्त है अपना मूड चेंज करने का।
9: वेलकम टू मूड रेस्टोरेंट, जहां हर बाइट के साथ मिलता है परफेक्ट टेस्ट और परफेक्ट वाइब्स।
10: चाहे हो फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट, फैमिली डिनर या मी टाइम, मूड रेस्टोरेंट है हर ओकेजन के लिए परफेक्ट।
9: Delicious premium steak, juicy burgers, creamy pastas और fresh drinks, सब कुछ एक ही जगह।
10: क्योंकि जब खाना हो जबरदस्त तो मूड खुद ही बन जाता है।
9: तो आज ही विजिट करें मूड रेस्टोरेंट, moodnottingham.com, 948 Woodpro Road, Nottingham, NG35QS।
10: हर दिन को बनाए स्पेशल मूड रेस्टोरेंट,
9: टेस्ट भी वाइब भी।
11: You are listening 97.1 FM.

0: You are listening Islamic Transmission on Faza 97.1 FM and DAB. You are listening Islamic Transmission on Faza 97.1 FM and DAB. You are listening Islamic Transmission on Faza 97.1 FM and DAB.
1: आप सुन रहे हैं इस्लामी नशरियात फजा 97.1 FM और डैब पर.
0: You are listening Islamic Transmission on Faza 97.1 FM and DAB.
1: आप सुन रहे हैं इस्लामी नशरियात फजा 97.1 FM और डैब पर.

0: You are listening Islamic Transmission on Faza 97.1 FM and DAB.
1: आप सुन रहे हैं इस्लामी नशरियात फजा 97.1 FM और DAB पर.
0: You are listening Islamic Transmission on Faza 97.1 FM and DAB.

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: यूके की सबसे बड़ी चांद रात मल्टीकल्चरल ईद फेस्टिवल आ रही है एक ग्रैंड अंदाज में। सेलिब्रेट करें ईद उल अधा फैमिली, फूड, शॉपिंग और जबरदस्त एंटरटेनमेंट के साथ। लाइव कवाली परफॉर्मेंस पाए उस्ताद रफाकत अली खान 26 मई 2026 शाम 6 बजे से लेट नाइट तक। बकरा मुबारक 2026 ब्रिंगिंग ट्रेडिशन टू लाइफ। डिटेल्स या बुकिंग के लिए अभी कॉल करें 07715299779 या 07552538250। बकरा मुबारक चांदरात मल्टीकल्चरल ईद फेस्टिवल 2026।
2: Attention, property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Fire Safety Solutions, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring you stay compliant with the Regulatory Reform Order 2005 by providing you with a professional risk assessment service. At Elite Care Fire Safety Solutions, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Fire Safety Solutions today at 077 30 791 412 or visit our website www.ecfss.com to secure a no obligation quote today.
3: राहिला बहन बहुत बहुत मुबारक हो, आपके बच्चों ने GCSE और SATs एग्जाम्स बड़े अच्छे नंबरों से पास किए हैं।
4: भाई मुबारक तो हो सलासा ट्यूशन सेंटर वालों को, जिनकी मेहनत से बच्चों ने GCSE मैथ्स, इंग्लिश और साइंस में A stars और SATs में ग्रेटर डेप्थ हासिल किए हैं।
3: सलासा ट्यूशन सेंटर?
4: जी हाँ, इनकी एक ब्रांच न्यू बेस्फोर्ड NG7 7FY और दूसरी ब्रांच स्नेंटनडेल NG2 4LG में है।
3: लेकिन मैं तो यूनिवर्सल क्रेडिट पे हूँ और फुल ट्यूशन फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकता।
4: मसला ही कोई नहीं, सलासा ट्यूशन सेंटर नॉटिंघम ऑफ स्टेट रजिस्टर्ड है और यूनिवर्सल क्रेडिट वालों के लिए 85% डिस्काउंट अवेलेबल है।
3: फिर तो मैं आज ही उनसे रब्ता करता हूँ।
5: जी हाँ, आज ही रब्ता कीजिए सलासा ट्यूशन सेंटर 07968046444 या 01159168231। कुछ बन गए आज तो कल काम आएगा।
6: Planning to upgrade your home or business space? Whether it's a brand new kitchen, a stylish bathroom, or a complete makeover, Mogul Builders are the experts you can rely on. From kitchen fitting and worktops, bathroom tiling, fitting and renovations, painting and decorative finishes, laminate, vinyl, and wooden flooring, to plastering, dry lining, and minor building work. Mogul Builders handle it all, from start to finish. Clean work, quality finish, fair prices. Call 07440-363063 or 07421-077999 for a free consultation and quote. Mogul Builders, transforming spaces, building trust.
7: आप सुन रहे हैं फजा 97.1 FM।
8: You are listening Islamic Transmission on Faza 97.1 FM and DAB. You are listening Islamic Transmission on Faza 97.1 FM and DAB. You are listening Islamic Transmission on Faza 97.1 FM and DAB.
9: आप सुन रहे हैं इस्लामी नशरियात फजा 97.1 FM और DAB.

0: are listening Islamic Transmission on Faza 97.1 FM and DAB.
1: आप सुन रहे हैं इस्लामी नशरियात फजा 97.1 FM और DAB पर.
0: You are listening Islamic Transmission on Faza 97.1 FM and DAB.
1: आप सुन रहे हैं इस्लामी नशरियात फजा 97.1 FM और DAB पर.
0: You are listening Islamic Transmission on Faza 97.1 FM and DAB. अगर तुम

0: आप सुन रहे हैं इस्लामी नशरियात फजा 97.1 FM और डैब पर।
1: You are listening Islamic Transmission on Faza 97.1 FM and DAB.

Mola, mola. Mola, mola. न मैं लिखू ना तू लिखे ना कोई और लिखार, ये कागज कच्चे चमड़े का वो पाक परवरदिगार। तू गुमान करता है अपनी तदबीर पर बंदे, मगर चलती वही है जो चाहता है।

मौला जाने लकीर क्या है, फकीर क्या है, मौला जाने। तू मांग उससे लकीर से न मांग, लकीर बनाने वाले से मांग।

0: You are listening Islamic Transmission on Faza 97.1 FM and DAB. You are listening Islamic Transmission on Faza 97.1 FM and DAB.
1: आप सुन रहे हैं इस्लामी नशरियात फजा 97.1 FM और DAB पर.

0: It's commercial time.
1: रूह को महका देने वाली एक यादगार शाम, लाइव कव्वाली परफॉर्मेंस, गेस्ट ऑफ ऑनर उस्ताद रफाकत अली खान एंड हमनवा ऑन स्पेशल इवेंट बकरा मुबारक 2026, इश्को सुरूर की महफिल कव्वाली नाइट 26 मई 2026 शाम 6 बजे से रात के तक। तशरीफ लाना मत भूलिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। Excelsior Nawab, Lotus Road, Nottingham, NG51EL. For details, please contact 077-1529-779 or 07-552-538-250. UK's biggest multicultural Eid festival, Bakra Mubarak 2026.
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार, सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताज़ा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताज़ा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा
4: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी राब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
5: Ariana Supermarket, 126132, Grassington Road, NG8 3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
6: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
7: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
6: अरे जाने दे, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
7: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
6: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
7: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, यहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
8: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
6: Park Foods, जो नाम है मायार का।
9: Discover the authentic taste of the Middle East at Mariah Restaurant in Tooting with a breakfast experience full of rich Arabic flavors. Enjoy freshly baked manish straight from the oven, topped with delicious melted cheese, warm traditional breads, creamy hummus and crispy fresh falafel prepared daily.
10: And when you're ready for something truly unforgettable, treat yourself to Mariah's signature dish, the legendary Especial Mandi, slow-cooked, aromatic and rich with traditional spices.
9: From breakfast and brunch to lunch, dinner and takeaway, Mariah Restaurant brings quality food and excellent service together under one roof. Open daily from 9:30 a.m. till 10:30 p.m.
10: Visit us at 136-138 Alfreton Road, Nottingham.
9: Or place your order today on 0759-315-0669. Mariah Restaurant, bringing the real taste of Arabia to your table.
11: You are listening 97.1 FM.
12: You are the same. We are playing
13: Fazan 97.1 FM.
14: मोहब्बतों में शुमार कैसा, यकीन कैसा, गुमान कैसा, सवाल कैसा, जवाब कैसा, अरूज कैसा, जवाल कैसा, मोहब्बतें तो मोहब्बतें हैं, मोहब्बतों में हिसाब कैसा, इन्हीं मोहब्बतों को समेटे हुए हम हैं आपके साथ
15: 97.1 FM।
1: You are listening Islamic Transmission on Faza 97.1 FM and DAB.
16: आप सुन रहे हैं इस्लामी नशरियात फजा 97.1 FM और डैब पर। You are listening Islamic Transmission on Faza 97.1 FM and app.
17: आप सुन रहे हैं इस्लामी नशरियात फजा 97.1 FM और डैब पर।
18: जीवन एक खेल है, इसे मुस्कुरा कर

0: You are listening Islamic Transmission on Faza 97.1 FM and DAB.
1: आप सुन रहे हैं इस्लामी नशरियात फजा 97.1 FM और DAB पर.
0: You are listening Islamic Transmission on Faza 97.1 FM and DAB. You are listening Islamic Transmission on Faza 97.1 FM and DAB. You are listening Islamic Transmission on Faza 97.1 FM and DAB.
1: आप सुन रहे हैं इस्लामी नशरियात फजा 97.1 FM और DAB पर.

0: on Faza 97.1 FM and DAB.
1: आप सुन रहे हैं इस्लामी नशरियात फजा 97.1 FM और DAB पर.
0: You are listening Islamic transmission on Faza 97.1 FM and DAB.
1: आप सुन रहे हैं इस्लामी नशरियात फजा 97.1 FM और DAB पर.
0: You are listening Islamic transmission on Faza 97.1 FM and DAB.
1: आप सुन रहे हैं इस्लामी नशरियात फजा 97.1 FM और DAB पर.
2: ये कैसा सफर है, ये कैसी जुस्तजू, जमीन पे चलते हैं आसमान को देखते हैं, हो या मौला हक इलाही.

0: You are listening Islamic Transmission on Faza 97.1 FM and DAB. You are listening Islamic Transmission on Faza 97.1 FM and DAB. You are listening Islamic Transmission on Faza 97.1 FM and DAB.
1: आप सुन रहे हैं इस्लामी नशरियात फजा 97.1 FM और DAB पर.
0: You are listening Islamic Transmission on Faza 97.1 FM and DAB.
1: आप सुन रहे हैं इस्लामी नशरियात फजा 97.1 FM और DAB पर.
0: You are listening Islamic Transmission on Faza 97.1 FM and DAB.
1: आप सुन रहे हैं इस्लामी नशरियात फजा 97.1 FM और DAB पर.

कमान से निकला तीर और जबान से निकली बात, कमान से निकला तीर और जबान से निकली बात वापिस नहीं आती।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: ओए खुशियाँ मनाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ।
2: आज तो बहुत खुश लग रहे हैं, खैर तो है।
1: मेरी बीवी का वीजा हो गया जी।
2: ओहो मुबारकबाद, बहुत जल्दी आ गया।
1: सारी नसीब दी गल है, मैं लोकल वीजा मायरीन दी मदद लई सी जी।
2: उनका नाम ही बता दें, हमें भी कभी जरूरत पड़ सकती है।
1: AMH सॉलिसिटर्स। और कौन? ओ वधिया ने, दोस्ताना माहौल, तेज ते जल्दी कम कर दे रहे। सोने ते स्वागा ये क्यों, हर तरह का वीजा एक्सटेंशन, इनडेफिनेट लीव टू रिमेन और सिटीजनशिप एप्लीकेशंस भी कर देने।
2: चले उनका पता भी बता दें, आपको तो जुबानी याद होगा।
1: हाँ जी क्यों नहीं, नॉटिंगम रोड, न्यू बेसफोर्ड, नॉटिंगम।
2: जबरदस्त, मैं उनसे राब्ता करूंगी अपनी फैमिली के वीजा के लिए। नंबर क्या है?
1: लो जी ओ भी जुबानी याद है, 01156713677। प्योर जिम दी बिल्डिंग विच ने, मुफ्ता मशवरा लो जी।
3: AMH Solicitors, Immigration Lawyers at Sovereign House, 184 Nottingham Road, New Basford, Nottingham, NG7 7BA. Large free car park available, or call them on 01156713677.

0: ईद उल अधा की खुशियों को ग्रैंड स्टाइल में सेलिब्रेट करें। ZK इवेंट्स और रेडियो फजा ला रहा है इस चांद रात को जबरदस्त इवेंट, बकरा मुबारक 2026, एक यादगार चांद रात एक्सपीरियंस। 26th of May, 6 PM till late. सिर्फ शॉपिंग नहीं, पूरी फैमिली के लिए एंटरटेनमेंट का धमाका। फूड स्टॉल्स, फैमिली फन, ईद वाइब्स और नॉन स्टॉप एक्साइटमेंट। तो इस चांद रात मिलते हैं बकरा मुबारक 2026 में, एक्सेलसियर नवाब, लोटस रोड, नोटिंगम, NG5 1EL।
1: बड़ी ईद की बड़ी खुशियों में आपके साथ साथ मराया रेस्टोरेंट। मराया रेस्टोरेंट की जानिब से तमाम अहले नॉटिंगम को बड़ी ईद की बड़ी खुशियां, बहुत बहुत मुबारक। तकबलुल्लाह मिन्ना व मिनकुम।
2: प्लानिंग अ वेडिंग, रिसेप्शन और स्पेशल सेलिब्रेशन? डिस्कवर एक्सेलसियर नवाब, नॉटिंगहम्स ब्रांड न्यू रेनोवेटेड बैंक्वेटिंग वेन्यू। A beautifully designed indoor marquee concept featuring sparkling traditional chandeliers, stunning LED lighting throughout, and elegant decor.
3: Enjoy venue hire, tables and chairs with table linen, chair covers, centerpieces, stage and walkway decor, a delicious three-course meal, drinks, professional waiter service, and a dedicated supervisor on the day.
2: Fully air-conditioned with modern kitchen facilities. A spacious foyer reception area located just 1 mile from Nottingham City Center at 5-7 Lourdes Road, NG51EL.
3: Excelsior Nawab, where your special moments become unforgettable.
4: You are listening Islamic Transmission on Faza 97.1 FM and DAB.
5: आप सुन रहे हैं इस्लामी नशरियात फजा 97.1 FM और DAB पर।
4: You are listening Islamic Transmission on Faza 97.1 FM and DAB.
6: Fanama Music.

0: आप सुन रहे हैं इस्लामी नशरियात फजा 97.1 एफएम और डैब पर।
1: यू आर लिसनिंग इस्लामिक ट्रांसमिशन ऑन फजा 97.1 एफएम एंड डैब।

0: आप सुन रहे हैं इस्लामी नशरियात फजा 97.1 एफएम और डैब पर।
1: यू आर लिसनिंग इस्लामिक ट्रांसमिशन ऑन फजा 97.1 एफएम एंड डैब।
0: आप सुन रहे हैं इस्लामी नशरियात फजा 97.1 एफएम और डैब पर।

0: You are listening Islamic Transmission on Faza 97.1 FM and DAB.
1: आप सुन रहे हैं इस्लामी नशरियात फजा 97.1 FM और DAB पर.
0: You are listening Islamic Transmission on Faza 97.1 FM and DAB. You are listening Islamic Transmission on Faza 97.1 FM and DAB. You are listening Islamic Transmission on Faza 97.1 FM and DAB.
1: आप सुन रहे हैं इस्लामी नशरियात फजा 97.1 FM और DAB पर.
0: You are listening Islamic Transmission on Faza 97.1 FM and DAB.
1: आप सुन रहे हैं इस्लामी नशरियात फजा 97.1 FM और DAB पर.
0: You are listening Islamic Transmission on Faza 97.1 FM and DAB.
2: ये कैसा सफर है, ये कैसी जुस्तजू, जमीन पे चलते हैं आसमान को देखते हैं, हो या मौला हक इलाही.

0: It's commercial time.
1: हेलो नॉटिंगम, हम एक डेडिकेटेड लोकल डॉक्टर और यंग फादर के लिए एक अर्जेंट स्टेम सेल डोनेशन की अपील कर रहे हैं, जो इस समय अपनी जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। उन्हें अर्जेंटली एक लाइफ सेविंग स्टेम सेल ट्रांसप्लांट की जरूरत है, लेकिन अफसोस अभी तक उनका साउथ एशियन मैच कहीं नहीं मिला है। हम पूरी साउथ एशियन कम्युनिटी से गुजारिश करते हैं कि प्लीज आगे आए और इस फादर की मदद करें। हम एक डोनर ड्राइव होस्ट कर रहे हैं ICCA सेंटर हकनल रोड पर ऑन वेंसडे 27th मई को शाम 6 बजे से 7:30 बजे तक। हम आपका एक चीक स्वाब लेंगे मुंह के अंदर से और फिर उसे टेस्टिंग के लिए भेज देंगे। हमें उम्मीद है कि आप वेंसडे आकर इस फैमिली की मदद जरूर करेंगे। शुक्रिया।
2: चांद रात की शॉपिंग अब होगी और भी जबरदस्त। कपड़े, ज्वेलरी, मेहंदी, ईद एक्सेसरीज, सब कुछ एक ही जगह। बकरा मुबारक 2026 UK का बिगेस्ट मल्टीकल्चरल ईद फेस्टिवल। अपनी फैमिली के साथ जरूर आएं। 26th of May 2026 शाम 6 से रात गए तक। एक्सेलसियर नवाब, लोटस रोड, नॉटिंगम, NG5 1EL। फॉर डिटेल्स कॉन्टेक्ट 07715299779 और 07552-538250।
3: Attention property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Training Academy, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring compliance and safety. At Elite Care Training Academy, we specialize in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704 135 or 07541 181 746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.
4: जी नासिर साहब, सुनाइए कैसे हैं आप और कहां तक पहुंची आपकी दुकान की रेनोवेशन?
5: बिल्कुल ठीक हूं यार, लेकिन दुकान की रेनोवेशन तो कंप्लीट हो चुकी है, बट कोई यार ना फिनिशिंग ना कोई क्वालिटी वर्क, बस मजा नहीं आया। अब सोच रहा हूं कि घर को अपग्रेड करना है, रेनोवेशन का काम है, किससे रابطہ किया जाए?
4: आपने मुगल बिल्डर्स का नाम नहीं सुना?
5: मुगल बिल्डर्स?
6: जी हाँ, मुगल बिल्डर्स। चाहे नया किचन हो, मॉडर्न और स्टाइलिश बाथरूम या फिर पूरा मेकओवर, मुगल बिल्डर्स हैं वो एक्सपर्ट्स जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं।
7: जी, मुगल बिल्डर्स किचन फिटिंग और वर्कटॉप से लेकर बाथरूम टाइलिंग, फिटिंग्स और रेनोवेशंस, पेंटिंग और डेकोरेटिव फिनिशेस, लेमिनेशन, विनाइल और वुडन फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, ड्राई लाइनिंग और जो भी काम बिल्डिंग से रिलेटेड हो, करते हैं ना मुगल बिल्डर्स।
6: मुगल बिल्डर्स स्टार्ट से फिनिश तक सब कुछ करते हैं।
7: मुगल बिल्डर्स, साफ सुथरा काम, बेहतरीन फिनिशिंग और मुनासिब दाम। तो अभी कॉल करें 07440-36-3063 या 07421-077999 पर फ्री कंसल्टेशन एंड कोट।
6: मुगल बिल्डर्स, जगह बदले, भरोसा तामीर करें।
8: यू आर लिसनिंग इस्लामिक ट्रांसमिशन ऑन फजा 97.1 FM एंड ऐप।
6: आप सुन रहे हैं इस्लामी नशरियात फजा 97.1 FM और डैब पर।
8: यू आर लिसनिंग इस्लामिक ट्रांसमिशन ऑन फजा 97.1 FM एंड ऐप। You are listening Islamic transmission on Faza 97.1 FM and DAB. You are listening Islamic transmission on Faza 97.1 FM and DAB.
6: आप सुन रहे हैं इस्लामी नशरियात फजा 97.1 FM और DAB पर।

शान और शौकत, ये तख्तो ताज सब धरा रह जाएगा जब मौत का फरिश्ता तुझे लेने आएगा। न कोई साथी

0: You are listening Islamic Transmission on Faza 97.1 FM and DAB.
1: जीवन एक खेल है, इसे मुस्कुरा

0: आप सुन रहे हैं इस्लामी नशरियात फजा 97.1 FM और डैब पर।
1: यू आर लिसनिंग इस्लामिक ट्रांसमिशन ऑन फजा 97.1 FM एंड डैब।
0: आप सुन रहे हैं इस्लामी नशरियात फजा 97.1 FM और डैब पर।
1: यू आर लिसनिंग इस्लामिक ट्रांसमिशन ऑन फजा 97.1 FM एंड डैब।
0: आप सुन रहे हैं इस्लामी नशरियात फजा 97.1 FM और डैब पर।
1: You are listening Islamic transmission on Faza 97.1 FM and DAB.

कमान से निकला तीर और जबान से निकली बात, कमान से निकला तीर और जबान से निकली बात वापिस नहीं आती।

0: You are listening Islamic Transmission on Faza 97.1 FM and DAB. You are listening Islamic Transmission on Faza 97.1 FM and DAB.
1: आप सुन रहे हैं इस्लामी नशरियात फजा 97.1 FM और DAB पर.

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: जी हाँ, राया रेस्टोरेंट में मिडल ईस्ट के असली जायके के साथ अपना दिन शुरू करें। सुबह का आगाज ऑथेंटिक अरेबिक ब्रेकफास्ट के साथ, फ्रेश बेक्ड ज़ातर ब्रेड जो पिघले हुए चीज के साथ और भी लजीज हो जाए, गर्मा गर्म रोटी सीधी ओवन से, क्रीमी हुमस और ताजा तैयार की हुई फलाफिल जो हर बाइट में फ्लेवर से हो भरपूर। और जब आप कुछ वाकई ही यादगार खाना चाहते हो तो जरूर ट्राई करें मराया रेस्टोरेंट की स्पेशल सिग्नेचर डिश लेजेंडरी स्पेशल मंदी, स्पेशली कुक्ड फॉर अनबीटेबल टेस्ट, खुशबूदार और रिवायती मसालों से भरपूर। चाहे ब्रेकफास्ट हो, ब्रंच, लंच, डिनर या टेक अवे, मराया रेस्टोरेंट हर दफा लाजवाब जायके और बेमिसाल सर्विस के साथ। रोजाना टाइमिंग सुबह 9:30 से रात 10:30 तक। विजिट करें 136-138 नॉटिंघम या अभी रब्ता करें 07593150669। मराया रेस्टोरेंट, जहाँ हर मील बन जाता है एक यादगार लम्हा।
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गरम और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा
4: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
5: Ariana Supermarket, 126-132, Grassington Road, NG8-3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
6: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159-168-231 or 07968-046-444. Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7, 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasa, Students Learning and Skills Academy.
7: ख्वाबों जैसी शादी का ख्वाब अब हकीकत में बदलने वाला है। आपकी खुशियों के हसीन लम्हे यादगार बनाने के लिए हयात वेडिंग डिकोर हाजिर है। जदीद तरीन थीम्स, शानदार सेटअप, संगीत, मेहंदी, वेडिंग रिसेप्शन, होम एंड वेन्यू, निकाह पार्टीशन, सेंटर पीसेस, वेलकम साइन, एंगेजमेंट, हाउस लाइटनिंग, वॉक अवे, डांस फ्लोर और आपकी पसंद के मुताबिक सजावट, वो भी आपके बजट में। तो देर किस बात की, अभी राब्ता करें हयात वेडिंग डेकोर से और अपनी शादी को बनाएं एक शानदार याद। मजीद मालूमात के लिए कॉल करें 07715-299-779 और विजिट अस एट
8: hayatweddings.co.uk।
9: यू आर लिसनिंग इस्लामिक ट्रांसमिशन ऑन फजा 97.1 FM एंड एप।
10: आप सुन रहे हैं इस्लामी नशरियात फजा 97.1 FM और डैब पर।

0: You are listening Islamic Transmission on Faza 97.1 FM and DAB.
1: आप सुन रहे हैं इस्लामी नशरियात फजा 97.1 FM और DAB पर.
0: You are listening Islamic Transmission on Faza 97.1 FM and DAB.
1: आप सुन रहे हैं इस्लामी नशरियात फजा 97.1 FM और DAB पर.
0: You are listening Islamic Transmission on Faza 97.1 FM and DAB. You are listening Islamic Transmission on Faza 97.1 FM and DAB. You are listening Islamic Transmission on Faza 97.1 FM and DAB.

0: You are listening Islamic Transmission on Faza 97.1 FM and DAB.
1: आप सुन रहे हैं इस्लामी नशरियात फजा 97.1 FM और DAB पर.

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
2: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
1: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
2: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
1: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
2: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
1: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
3: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रابطہ करें 0115-929-8484 या 0770210793।
4: Ariana Supermarket, 126132, Grassington Road, NG8-3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
5: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
6: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
5: अरे जाने दें, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
6: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
5: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
6: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
7: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG2 4HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG7 6LW.
5: Park Foods, जो नाम है मायार का।
8: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasa, Students Learning and Skills Academy.
9: रोज रोज सेम रूटीन से बोर हो गए हैं,
10: तो अब वक्त है अपना मूड चेंज करने का।
9: वेलकम टू मूड रेस्टोरेंट, जहां हर बाइट के साथ मिलता है परफेक्ट टेस्ट और परफेक्ट वाइब्स।
10: चाहे हो फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट, फैमिली डिनर या मी टाइम, मूड रेस्टोरेंट है हर ओकेजन के लिए परफेक्ट।
9: Delicious premium steak, juicy burgers, creamy pastas और fresh drinks, सब कुछ एक ही जगह।
10: क्योंकि जब खाना हो जबरदस्त तो मूड खुद ही बन जाता है।
9: तो आज ही विजिट करें मूड रेस्टोरेंट, moodnottingham.com, 948 Woodsboro Road, Nottingham, NG3 5QS।
10: हर दिन को बनाएं स्पेशल मूड रेस्टोरेंट,
9: टेस्ट भी, वाइब भी।
10: आप सुन रहे हैं इस्लामी नशरियात फजा 97.1 FM और डैब पर।

0: You are listening Islamic Transmission on Faza 97.1 FM and DAB.
1: जीवन एक खेल है, इसे मुस्कुरा

0: You are listening Islamic Transmission on Faza 97.1 FM and DAB.
1: आप सुन रहे हैं इस्लामी नशरियात फजा 97.1 FM और DAB पर.
0: You are listening Islamic Transmission on Faza 97.1 FM and DAB.
2: अगर

very blessed and a very beautiful Jumma Mubarak to all my lovely listeners. मैं हूं आपकी होस्ट ज़ैनब फातिमा. वेलकम करती हूं आप सभी को आपके फेवरेट शो द टीवा डायलॉग विद रेडियो फजा 97.1 FM में. जी तो लिसनर्स, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि रेडियो फजा 97.1 ही वाहिद वो प्लेटफॉर्म है जहां मिलती है आपको इन्फॉर्मेशन, कम्युनिकेशन एंड एंटरटेनमेंट. जी तो लिसनर्स, इस इन्फॉर्मेशन, इस कम्युनिकेशन और इस एंटरटेनमेंट के पैटर्न को लेके चलेंगे हम और आप अब से लेकर ठीक दो घंटे तक, यानी ठीक 10 बजे से लेकर 12 बजे तक हम और आप रहेंगे साथ साथ. पूरी कोशिश है कि मिलकर बनाएंगे आपके आज के इस दिन को, इस सुबह को और आज के जुमातुल मुबारक को मज़ीद खूबसूरत, मज़ीद यादगार, मज़ीद ब्यूटीफुल. चीफ लिसनर्स, इंतज़ार किस बात का है, अभी उठाइए फ़ोन. 01157100971 है हमारे स्टूडियो का लाइव नंबर. तो आप इस नंबर के जरिए से हमसे रब्ता कर सकते हैं, अपना नाम, कोई प्यारा सा पैगाम. जैसा कि आज जुम्मतुल मुबारक का नेक और बाबरकत दिन है, सो इस दिन के हवाले से अगर आपकी कोई क्यूरीज हैं या फिर आपके कोई ऐसी तजुर्बात हैं या फिर कुछ ऐसी लाइफ मोमेंट्स हैं जिनको आप चाहते हैं कि आप किसी के साथ शेयर करें. होता है ना, समटाइम्स हम सभी की लाइफ में बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स, बहुत सारे ऐसे अप्स एंड डाउन्स आते हैं कि दिल करता है कि कोई हो हमें सुनने वाला, कोई हो हमें टाइम देने वाला. बाज़ औक़ात इंसान चाहता है कि इंसान को सुना जाए, क्योंकि कहा जाता है कि जो लोग दूसरों को सुनते हैं उनको हमेशा कोई भी नहीं सुनता. सो इन सभी चीज़ों के लिए आप हमें मैसेज कर सकते हैं और अपने होने का एहसास दिला सकते हैं. इसके साथ ही आप हमें radiofaza.com.uk की वेबसाइट के थ्रू लाइव ट्यून कर सकते हैं और हमारी एप्लीकेशन रेडियो फजा 97.1 FM को इजीली अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हैं ताकि आपको लाइव अपडेट्स मिलती रहे और आप इसी तरह से हमारे साथ कनेक्टेड रहें. क्योंकि मैं हमेशा से कहती हूँ कि कनेक्शंस हमेशा वही पायदार होते हैं, वही स्ट्रांग होते हैं जो इमोशनली इन्वॉल्व होते हैं. समटाइम्स क्या होता है कि हम बहुत सारे लोगों के साथ कनेक्टेड होते हैं, बहुत सारे लोगों के बहुत आसपास होते हैं, बट स्टिल क्योंकि हमारा जो उनके साथ बॉन्ड होता है वो फिजिकली अटैचमेंट नहीं होती, वो चार्म नहीं होता, वो इन्फेचुएशन नहीं होती, जिसके सबब आप किसी के बहुत पास रहते हुए भी उससे बहुत ही ज़्यादा दूर हो जाते हैं. सो मैं यही चाहती हूँ कि लिसनर्स आपका और मेरा साथ रहे कुछ इस तरह से कि हम चाहे फिजिकली एक दूसरे के साथ ना भी हों लेकिन हम इमोशनली तौर पर एक दूसरे के करीब हों, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करें और मैं अपने तमाम तर लिसनर्स की क्यूरीज को दूर करूँ. जैसा कि लिसनर, जहां हमने बात की उन सभी लिसनर्स की जो अभी इस वक्त अपने घरों से बाहर निकल रहे होंगे या फिर अभी इसी सोच में होंगे कि चलो काम पर चलते हैं, क्योंकि हर आने वाला नया दिन अपने साथ बहुत सारे नए कामकाज लेकर आता है, नए तजुर्बात लेकर आता है. सो काम तो फिर ज़िंदगी का हिस्सा है, काम तो करने पड़ते हैं. और उसके साथ साथ वो तमाम तर लिसनर जो इस वक्त ड्राइव कर रहे हैं और चाहते हैं कि आपको सुनने को कुछ अच्छा मिले जो आपके मूड को फ्रेश कर दे बिल्कुल, सो आप हमें फजा टैप के थ्रू ट्यून कर सकते हैं. सो जी लिसनर्स, फौरी तौर पर हमें ट्यून करें और हमारे साथ अपडेट रहें. जैसा कि लिसनर्स, आज जुमातुल मुबारक है, यानी कि हफ्ते का, पूरे वीक का वो एक ऐसा दिन, एक खास वाहिद दिन जो कि दिन है हमारा अपने आप को अपने परवरदिगार के करीब करने का. जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हम क्या करते हैं थ्रू आउट द होल वीक, काम काज करते रहते हैं, अपनी दुनियावी ज़िंदगी को इतना ज़्यादा टाइम देते हैं, फिजिकली भी, इमोशनली भी, मेंटली भी हम उन्हीं चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं जो हमसे हमारे वर्क रिलेटेड होती हैं. तो समटाइम्स हम क्या एक चीज़ स्किप कर देते हैं, वो है अल्लाह के साथ अपने कनेक्शन को. हम क्या करते हैं कि हम अपने दुनियावी काम काज में इस कदर आगे बढ़ जाते हैं, बहुत आगे निकल जाते हैं कि हम इस चीज़ को भूल जाते हैं कि हमारा इस दुनिया में आने का बेसिकली मकसद क्या है, हम क्यों इस दुनिया में आए हैं और हमारा पर्पस क्या है. और बात वही है कि एक इंसान, वही इंसान कामयाब होता है जो कभी भी अपने मकसद से ना हटे, कभी अपने पर्पस से ना हटे और अपने पर्पस की तरफ रवा दवा रहे.
سوچے لسنرز, تو یہ ایک واحد موقع ہے آپ سبھی کے پاس کہ آج جیسا کہ جمعۃ المبارک کا نیک پاک بابرکت دن ہے, سو آج کے اس دن کی نسبت سے آپ اپنی معمولات زندگی سے تھوڑا سا ٹائم نکالیں, تھوڑی سی اپنی مصروفیت کو کم کریں اور اپنے اللہ کے ساتھ اپنے اس کنیکشن کو مضبوط کریں. کوشش کریں کہ اگر آپ کو ایسا فیل ہو رہا ہے کہ سم ہاؤ آپ کا یہ جو کنیکشن ہے, یہ جو بانڈ ہے, یہ ویک ہو چکا ہے, یا پھر آپ کو غفلت میں بہت زیادہ ٹائم گزر چکا ہے دنیا کی بھیڑ میں, دنیا کی موج مستی میں, تو آج ہی کا دن ہے.

अब अगर हम नेकी की बात करें तो सबसे पहले नेक अमल करना भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपने आसपास अपने इर्द गिर्द इस माहौल को ऑब्जर्व करना, इसको समझना, ये भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब जैसे देखें आप, हमारे आसपास बहुत सारे लोग अगर रहते हैं, इन केस उन्हें हमारी मदद की ज़रूरत है, हम उनकी मदद नहीं कर रहे और हमारा फोकस इसी चीज़ पर है कि हम टाइमली नमाज़ पढ़ रहे हैं, इबादत कर रहे हैं, दुरूद शरीफ पढ़ रहे हैं, और हमारा एक मोमिन मुसलमान भाई बहन हमारे मोहताज हैं, उन्हें हमारी मदद की ज़रूरत है और उन्हें सपोर्ट नहीं कर रहे, तो वो नेकी भी किसी कायम नहीं आती। सो कोशिश करें कि इन छोटी छोटी चीज़ों का, इन छोटी छोटी बातों का ख्याल रखें, अपने आसपास के माहौल को ऑब्जर्व करें, कहीं कोई ज़रूरतमंद ऐसा शख्स तो नहीं जिसे आपके एहसास की, आपके टाइम की और आपके इमदाद की ज़रूरत हो। सो जी, इस माह जुमा की निस्बत से, आज के नेक पाक दिन की निस्बत से अपनी ज़िंदगी में एक नया रेजोल्यूशन लाएं और अपने इस अल्लाह के साथ बॉन्ड को मज़ीद मजबूत करें।

जी तो लिसनर्स, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हमारे हर शो की इब्तिदा होती है एक खूबसूरत बात से, एक खूबसूरत से कोट से। तो जी लिसनर्स, आज भी आप सभी के लिए लाई हूँ एक ऐसा ही मोटिवेशनल कोट, उन सब के लिए जो दुनिया को एक नए नजरिए से देखना चाहते हैं।

So the quote is, the only limit to our realization of tomorrow will be our doubts of today. चलिए जी इस खूबसूरत सी बात को जरा गहराई से समझते हैं। जी तो लिसनर्स, ये कोट हमें बताता है कि कल की हकीकत को समझने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका होता है, वो ये है कि हमारे आज का जो सुकून है, हमारे जो आज के डाउट्स हैं और हमारे जो आज का डर है उसको समझना। यानी कि जो आने वाले कल की रियलाइजेशन है वो तभी होगी जब हम अपने आज को समझेंगे, आज को परखेंगे और आज को तब्दील करने की कोशिश करेंगे। अक्सर कहा जाता है, डाउट किल्स मोर ड्रीम्स देन फेलियर एवर विल। जब भी कभी हम किसी नई चीज की शुरुआत करते हैं, जैसा कि कोई नया बिजनेस हो, कोई नई रेसिपी हो या हो कोई नई किताब पढ़ना, तो सबसे पहले जो एक चीज हमारे माइंड में आती है, यानी कि मेरे आपके हम सभी लिसनर्स के एक जो सवाल हमारे माइंड में आता है वो ये है कि क्या मैं ये कर सकूंगी। जी तो अगर हम खुद पर यकीन रखते हैं तो पूरी दुनिया चाहे इधर से उधर क्यों ना हो जाए, हम वो काम जरूर कर सकते हैं। अच्छा, बाज़ूकात समटाइम्स ऐसा होता है कि हमारी लाइफ में अक्सर ऐसे मोमेंट्स आ जाते हैं जब हमें लगता है कि हम बिल्कुल थक से गए हैं, बट रिमेम्बर द बेस्ट व्यू कम्स आफ्टर द हार्डेस्ट क्लिप। मुश्किलात आपकी ज़िंदगी का हिस्सा हैं और इन्हीं मुश्किलात से गुजरना ही एक असल इंसान की, एक असल मुसलमान की और एक असल मोमिन की निशानी है। तो लिसनर्स, हमारा आज का जो ये खूबसूरत सा कोट ऑफ द डे है, यानी कि आज का कोट हमें ये चीज सिखाता है, बताता है कि अगर हम डाउट्स में रहेंगे, यानी कि जिंदगी में शको शुभात करते रहेंगे, तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। बाज़ूकात कोई हम काम कर रहे होते हैं, अभी हम फेल नहीं हुए होते, लेकिन चूंकि हमारे माइंड में एक परसेप्शन बन जाता है, हमारे माइंड में एक सिनेरियो बन जाता है कि हम अगर ये काम करेंगे हमसे नहीं हो पाएगा, हम नहीं कर सकते, वी आर नॉट बी एबल टू डू द थिंग्स इन दैट वे। सो इस सभी की निस्बत, इस सभी के मुताबिक होता ये है कि आप उस काम का इरादा ही नहीं करते। और ऑनेस्टली, जब आप किसी काम का इरादा ही नहीं करते इस डर से कि आप नहीं कर सकेंगे, तो आप उसको सक्सेसफुली किस तरह से कंप्लीट कर सकते हैं। सो आज का हमारा कोट ये कहता है कि जिंदगी में जैसे मर्जी हालात हो, मुश्किल काम हो, आसान काम हो, लेकिन सेल्फ बिलीव, सेल्फ कॉन्फिडेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तभी आप जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं, तभी आप नई राहें हमवार कर सकते हैं।

लिसनर्स, मेरा आज आप सभी से एक सवाल है। वो कौन सी एक ऐसी चीज है जिसे आप करना चाहते हैं लेकिन किसी डर की वजह से आप रुके हुए हैं। सो जी लिसनर्स, मुझे बताइए किस तरह से बताएंगे आप। अभी अपना फोन उठाइए, 01157100971 है हमारे स्टूडियो का लाइव नंबर। सो जल्दी से जाइए और मुझे बताइए कि आपके ऐसे क्या गोल्स हैं, क्या ड्रीम्स हैं जिन्हें करना तो आप चाहते हैं बट समहाउ फॉर सम रीजन किसी डर से, किसी टेंशन से, किसी स्ट्रेस, किसी एंजाइटी से आप वो नहीं कर पा रहे। तो लिसनर्स, अभी वक्त हुआ चलता है हमारे शो में एक खूबसूरत से सूफियाना कलाम को शामिल करने का। जैसा कि आज जुमातुल मुबारक है, सो जुमातुल मुबारक की निस्बत से आज हम सुनेंगे आबिदा परवीन साहिबा का ये खूबसूरत सा कलाम। उम्मीद करती हूँ कि ये कलाम आपके दिलों को जरूर छू लेगा। तो चलिए चलते हैं और कलाम की जानिब बढ़ते हैं।

सी तो लिसनर, सॉरी टू इंटरप्ट यू, बट अभी इस वक्त शो में वक्त हुआ है एक अदद कमर्शियल ब्रेक का। सो जी लिसनर्स, चलिए बढ़ते हैं इस कमर्शियल ब्रेक की जानिब और आपसे मुलाकात होगी ब्रेक के उस पार, और फिर वहीं से कंटिन्यू करेंगे अपनी इस गपशप को।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: यूके की सबसे बड़ी चांद रात मल्टीकल्चरल ईद फेस्टिवल आ रही है एक ग्रैंड अंदाज में। सेलिब्रेट करें ईद उल अधा फैमिली, फूड, शॉपिंग और जबरदस्त एंटरटेनमेंट के साथ। लाइव कवाली परफॉर्मेंस पाए उस्ताद रफाकत अली खान 26 मई 2026 शाम 6 बजे से लेट नाइट तक। बकरा मुबारक 2026 ब्रिंगिंग ट्रेडिशन टू लाइफ। डिटेल्स या बुकिंग के लिए अभी कॉल करें 07715299779 या 07552538250। बकरा मुबारक चांद रात मल्टीकल्चरल ईद फेस्टिवल 2026।
2: Attention, property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Fire Safety Solutions, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring you stay compliant with the Regulatory Reform Order 2005 by providing you with a professional risk assessment service. At Elite Care Fire Safety Solutions, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Fire Safety Solutions today at 077 30 791 412, or visit our website www.ecfss.com to secure a no obligation quote today.
3: राहिला बहन बहुत बहुत मुबारक हो, आपके बच्चों ने GCSE और SATs एग्जाम्स बड़े अच्छे नंबरों से पास किए हैं।
4: भाई मुबारक तो हो सलासा ट्यूशन सेंटर वालों को, जिनकी मेहनत से बच्चों ने GCSE मैथ्स, इंग्लिश और साइंस में ए स्टार्स और SATs में ग्रेटर डेप्थ हासिल किए हैं।
3: सलासा ट्यूशन सेंटर?
4: जी हाँ, इनकी एक ब्रांच न्यू बेस्फोर्ड NG7 7FY और दूसरी ब्रांच स्नेंटनडेल NG2 4LG में है।
3: लेकिन मैं तो यूनिवर्सल क्रेडिट पे हूँ और फुल ट्यूशन फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकता।
4: मसला ही कोई नहीं, सलासा ट्यूशन सेंटर नॉटिंघम ऑफ स्टेट रजिस्टर्ड है और यूनिवर्सल क्रेडिट वालों के लिए 85% डिस्काउंट अवेलेबल है।
3: फिर तो मैं आज ही उनसे रब्ता करता हूँ।
5: जी हाँ, आज ही रब्ता कीजिए सलासा ट्यूशन सेंटर 07968046444 या 01159168231। कुछ बन गए आज तो कल काम आएगा।
6: Planning to upgrade your home or business space? Whether it's a brand new kitchen, a stylish bathroom, or a complete makeover, Mogul Builders are the experts you can rely on. From kitchen fitting and worktops, bathroom tiling, fitting and renovations, painting and decorative finishes, laminate, vinyl, and wooden flooring, to plastering, dry lining, and minor building work. Mogul Builders handle it all, from start to finish. Clean work, quality finish, fair prices. Call 07440-363063 or 07421-077999 for a free consultation and quote. Mogul Builders, transforming spaces, building trust.
7: आप सुन रहे हैं फजा 97.1 FM।

बैक वंस अगेन, एक बार फिर से मैं हूँ आपकी होस्ट ज़ैनब फातिमा। वेलकम करती हूँ आप सभी को आपके फेवरेट शो द टीवा डायलॉग विद रेडियो फजा 97.1 FM। तो लिसनर्स, ये इनिशियल सा इंट्रोडक्शन उन तमाम तर लिसनर्स के लिए था जिन्होंने अभी अभी हमें ज्वाइन किया है। जैसा कि हमने ब्रेक से पहले बात की आज के इस खूबसूरत से जमातुल मुबारक के नेक पाक बरकत दिन की, और किस तरह से आप आज के दिन को मजीद खूबसूरत बना सकते हो और अपने परवरदिगार से अपना इस बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। तो अब बात आती है कि हम जरा जहां बात हो फ्राइडे की, वहीं दस्तरखान की बात ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। और वैसे भी कहा जाता है कुकिंग इज एन आर्ट, बट कुकिंग वेजिटेबल्स विद टेस्ट इज अ सुपर पावर। अब क्या होता है कि मोस्टली हम डेली बेसिस पर बहुत सारे खाने बनाते हैं, और मीट लवर्स तो जैसा कि हम एशियन फैमिलीज में एग्जिस्ट करते ही हैं, लेकिन मैंने सोचा कि क्यों ना हम डेली बेसिस पर मीट खाते हैं, मीट से रिलेटेड मज़ेदार रेसिपीज को ट्राई करते हैं। बट आज हम ट्राई करेंगे कुछ डिफरेंट, कुछ यूनिक, कुछ ज़रा हट के फ्यूजन, यानी कि आज की जो हमारी रेसिपीज़ हैं उन तमाम तर डीवास के लिए जो लोग घरों में हैं और इस वक्त सोच रही हैं कि आखिर आज फ्राइडे है तो क्या खाने में बनाया जाए और हो भी टेस्टी और हो भी झटपट। सो आज लाई हूँ आप सभी के लिए हमारा जो इंग्रेडिएंट लिस्ट है, यानी कि हमारी जो आज की रेसिपीज हैं वो हैं टोटली वेजिटेबल, यानी कि वेजिटेरियन, फॉर दोज पीपल्स जिनको मीट बिल्कुल भी पसंद नहीं होता।

से तो लिसनर्स, हमारी आज की जो फर्स्ट रेसिपी है इट्स कॉल्ड शाही पनीर कुंदन। सो इसके लिए ये इट्स अ टोटली वेजिटेरियन रेसिपी और जो जो इंग्रेडिएंट्स हमें दरकार हैं आप सभी से शेयर करती हूँ। सो जल्दी से कॉपी पेंसिल रेडी कर ले ताकि कुछ भी मिस आउट ना हो जाए और आप तमाम तरह इंग्रेडिएंट्स को इसी तरह से लिख सकें। अच्छा, इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए पनीर या फिर चीज। आप इसको ले सकते हैं 300 ग्राम्स, लेकिन आपने किस तरह से चीज़ को यूज़ करना है कि आपने इसको क्यूब्स की शक्ल में कट कर लेना है। फिर साथ ही साथ आप हमारा सेकंड इंग्रेडिएंट है टमाटर, जिनको हम 3 से 4 अदद ले सकते हैं। अब आ जाती है अनियंस, अनियंस भी हम 2 से 3 अदद ले सकते हैं, लेकिन अनियंस को हमने बिल्कुल बारीक कट करना है ताकि वो बिल्कुल भी खाने में इरिटेट ना करें। क्योंकि मैंने अक्सर लोगों को देखा है कि जब भी वो कुछ खाना बनाते हैं या कोई भी रेसिपी ट्राई करते हैं तो अनियंस को बहुत ही ज़्यादा बड़े बड़े साइज़ में कट कर देते हैं, जिससे ये होता है कि जब आप खा रहे होते हो खाना तो वो आपके मुंह में आ रहे होते हैं और आपको बहुत इरिटेटिंग लग रहे होते हैं। सो बिल्कुल बारीक साइज़ में आपने कटिंग करनी है ताकि इंग्रेडिएंट्स दिखने में भी प्यारे लगें और प्रेजेंटेबल भी लगें। अब आ जाते हैं ज़रा नेक्स्ट इंग्रेडिएंट की जानेब। सो नेक्स्ट हमें चाहिए इसमें काजू, जो कि आप 8 से 10 अदद यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल आपने उनका पेस्ट बना कर रख लेना है। फिर चाहिए हमें जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टेबल स्पून, कसूरी मेथी 1 टेबल स्पून, फ्रेश क्रीम 3 टेबल स्पून, हल्दी, लाल मिर्च, गरम मसाला और नमक। ये वो वाहिद चीज़ें हैं, यानी कि ये वो वाहिद स्पाइसेस हैं जो कि हर खाने की शान होते हैं, खाने का जायका बढ़ाते हैं, लेकिन इट्स टोटली अप टू यू कि आप किस तरह से किस हिसाब से इनको यूज़ करते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो कम स्पाइसेस पसंद करते हैं, ऑन द अदर हैंड बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो ज़्यादा स्पाइसेस पसंद करते हैं। इसी तरह मैंने ये भी एक बहुत कॉमन सी चीज़ देखी है कि लोग नमक भी खाने में, कुछ लोग कम नमक पसंद करते हैं और कुछ लोग ज़्यादा। सो इट्स अप टू यू, इट्स टोटली योर चॉइस कि आप अपने स्पाइसेस को किस तरह से हैंडल करते हैं। बट फॉर मी, मैं इस पे सिर्फ और सिर्फ 1 टेबल स्पून एंड 1.5 टेबल स्पून सॉल्ट ऐड करूँगी और 1 टेबल स्पून ऐड करूँगी लाल मिर्च और 1/2 टीस्पून ऐड करूँगी हल्दी। और अगर बात की जाए गरम मसाला जात की तो थोड़े से आप लौंग ऐड कर सकते हैं, दालचीनी ऐड कर सकते हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो हमारा मेन इंग्रेडिएंट है इस रेसिपी को फुलफिल करने के लिए, वो है हमारा बटर। अच्छा, आप बटर 3 टेबल स्पून यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जस्ट इन केस अगर बटर आपके घर में नहीं पड़ा हुआ तो आप इसे कुकिंग ऑयल में भी बना सकते हैं। सो ये थे हमारे इंग्रेडिएंट्स। तो आई थिंक सो आप सभी ने अभी तक इंग्रेडिएंट्स नोट डाउन कर लिए होंगे। चलिए ज़रा चलते हैं और बढ़ते हैं रेसिपी की जानिब।

अच्छा, अब आपने इस रेसिपी को किस तरह से बनाना है, आपको सिंपली स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर बताती हूँ, ताकि वो तमाम तर लिसनर्स यानी कि फीमेल्स के साथ साथ मर्द हजरात भी जो मुझे भी सुन रहे हैं और जो बिल्कुल बिगनर हैं जिन्होंने आज तक कभी कोई चीज़ ट्राई नहीं की, वो भी इसको इजीली बना सके। सो सबसे पहले आपने एक अदद पैन ले लेना है, उसमें आपने थोड़ा सा बटर या फिर कुकिंग ऑयल, आप दोनों में से कोई भी चीज़ यूज़ कर सकते हैं जो आपके पास अवेलेबल हो, उसको अच्छी तरह से गर्म कर लें। गर्म करने के बाद अब आपने क्या करना है, वो पनीर के जो क्यूब्स आपने कट करके रखे थे साइड पे, उनको हल्का सा गोल्डन फ्राई कर लेना है, यहाँ तक कि वो बिल्कुल हल्के से गोल्डन फ्राई हो जाए। इसको बिल्कुल भी ज़्यादा फ्राई नहीं करना, क्योंकि जब आप ज़्यादा फ्राई कर देंगे तो जो कलर है वो डार्क हो जाएगा, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिखेगा। तो बिल्कुल हल्का सा जब गोल्डन ब्राउन हो जाए तो तब तक आप पनीर के क्यूब्स को पकाएं और फिर उसके बाद उनको निकाल कर साइड पे रख लें। अच्छा, अब आपने क्या करना है, उसी कुकिंग ऑयल के अंदर, उसी बटर के अंदर सेकंड स्टेप में आपने प्याज को ऐड करना है और इसको तब तक पकाना है कि जब तक वो ब्राउन हो जाए। जब आपका प्याज सुनहरा हो जाए तो फिर आप इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट और वो जो टमाटर थे जिनको आपने रखा था उनका अच्छा सी प्यूरी बना लेनी है टोमेटोज की, और जिंजर गार्लिक पेस्ट को पहले ऐड करना है और दो से तीन बार तड़का लगाने के बाद आपने टमाटर्स का पेस्ट इसके अंदर शामिल करके अच्छी तरह से भून लेना है। अब बारी आती है मसाला जात की। जब मसाले से ऑयल बिल्कुल अलग होने लगे तो जो काजू का पेस्ट हमने बना कर रखा था उसे हम बीच में शामिल कर देंगे, एंड देन फिर आती है स्पाइसेस की, जिनके बिना हर चीज़, हर खाना, हर जायका अधूरा है। सो आपने लाल मिर्च, हल्दी और नमक इसके अंदर शामिल कर देना है और फिर इसे दो मिनट पकाने के बाद इसमें थोड़ा सा और पानी और वही जो फ्राइड पनीर हैं उन्हें ऐड कर देना है।

अच्छा, 2 से 3 मिनट इसे अच्छी तरह से पकाने के बाद, अच्छी तरह से भूनने के बाद अब बारी आती है हमारी रेसिपी में इसको जान डालने के लिए क्रीम की। तो अब आपने इसमें फ्रेश क्रीम ऐड कर देनी है और साथ ही साथ कसूरी मेथी, जिसे आपने अपने हाथ से थोड़ा सा मैश कर लेना है ताकि उसका अरोमा इंक्रीज हो जाए, इन दोनों चीज़ों को आपने इसके अंदर ऐड कर देना है और बस 5 से 6 मिनट के लिए अच्छी तरह से इसको पकाना है, और वो भी बिल्कुल लो फ्लेम में। अच्छा, जब भी आप कोई भी रेसिपी ट्राई कर रहे हो, कुछ भी बना रहे हो, तो कोशिश किया करें कि जब आप बना रहे हो तो बेशक शुरू में आपका फ्लेम थोड़ा सा भी हाई हो जाए, लेकिन जब आप रेसिपी के फाइनल प्रोसीजर की यानी के फाइनल स्टेप की जाने बढ़ें तो आप फ्लेम को बिल्कुल लो कर दें, ताकि जो आपका इंग्रेडिएंट्स हैं सभी वो आराम से स्लोली कुक हों, क्योंकि जो चीज़ स्लोली कुक होती है वो बहुत ज़्यादा टेंडर होती है, बहुत ज़्यादा जूसी होती है। ऑन द अदर हैंड अगर फ्लेम हाई कर दी तो वो जल्दी से खाना जलने लग पड़ता है, इनकेस अगर पक भी जाता है तो उस तरह का टेस्ट इन्हेंस नहीं होता। जी 5 से 6 मिनट पकाने के बाद आपकी मज़ेदार से रिच शाही पनीर तैयार हो जाएंगे। ये थी हमारी आज की मेन डिश, मेन कोर्स, फॉर दोस्त लिसनर्स जिनको वेजिटेरियन बहुत ज़्यादा पसंद है।

तो लिसनर्स, आज की सेकंड रेसिपी की जानिब बढ़ते हैं। तो जैसा कि आप सभी को मालूम है कि एशियन फैमिलीज में जुम्मे का दिन हो और राइस ना हो, इट्स इम्पॉसिबल, क्योंकि ये हमारे यहाँ एक ट्रेडिशन समझा जाता है, एक ट्रेडिशन माना जाता है कि जब भी फ्राइडे को जुमे की नमाज पढ़ के सभी लोग घर वापस आए तो आगे खाने में क्या पका हो, बिरयानी या फिर हो चावल। तो चावलों को एशियन फैमिलीज बहुत ही ज्यादा पसंद करती हैं, बहुत ही ज्यादा। तो मैंने सोचा कि जैसा कि आज हम वेजिटेरियन पीपल्स के लिए, वेजिटेरियन लिसनर्स के लिए अच्छी अच्छी रेसिपीज बना रहे हैं, तो क्यों ना अगर हम आज चावल बनाएं भी तो कुछ इस स्टाइल में कि जो हमारे वेजिटेरियन लिसनर्स को अट्रैक्ट करे। तो जी आज हम बनाएंगे क्रीमी वेजी वाइट पुलाव। वैसे आप सभी ने पुलाव तो बहुत से खाए होंगे, लेकिन ट्रस्ट मी, इट्स अ रियली गुड रेसिपी। और जब आप एक बार इसको ट्राई करेंगे तो आप जरूर कहेंगे कि इसे आपको बार बार ट्राई करना चाहिए, क्योंकि फॉर टेस्ट, फॉर अरोमा, ये बिरयानी को टक्कर देती है। चलिए लिसनर्स, बिना टाइम जाया किए हम फौरी तौर पर इसके इंग्रेडिएंट्स की जानिब बढ़ते हैं। आई नो नाम से ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रही है, तो मेरे लिसनर्स क्यूरियस हो रहे होंगे कि आखिर इस पुलाव को किस तरह से बनाना है। सो जी इसके इंग्रेडिएंट लिस्ट आप सभी से शेयर करती हूँ। इसके लिए हमें चाहिए बासमती चावल 500 ग्राम्स, जिनको आपने अच्छे से साफ करके भिगो के रख देना है। साथ ही साथ हमें चाहिए मिक्स सब्जियां, जिसमें गाजर, मटर, आलू, गोभी और इसके साथ साथ कोई भी सीजनल वेजिटेबल आप यूज़ कर सकते हैं। इट्स टोटली अप टू यू, क्योंकि आपने बहुत सी वेजिटेबल्स यूज़ करनी है। तो अगर इन केस आपको इन सभी वेजिटेबल्स में से कोई वेजिटेबल नहीं पसंद तो उसको स्किप कर दें और उसकी जगह कोई ऐसी एक वेजी ऐड कर लें जो आपको पसंद हो। अच्छा, आपने क्या करना है, इन सभी वेजिटेबल्स को अच्छे से कट करके रख लेना है और इनकी क्वांटिटी आपने इस हिसाब से लेनी है कि जैसे कि हमारे जो चावल हैं वो 500 ग्राम हैं, सो आई थिंक 150 ग्राम इज इनफ फॉर द पुलाव। लेकिन अगर आप इससे भी ज़्यादा वेजीज पसंद करते हैं तो थोड़ी सी और इंक्रीज कर दें। इट्स टोटली अप टू यू, इट्स टोटली योर चॉइस। अब आ जाते हैं नेक्स्ट इंग्रेडिएंट की जानिब, जो कि है प्याज। प्याज तो फिर हर एक चीज़ में ही कंपल्सरी होता है। फिर आती है बारी योगर्ट की। अच्छा, योगर्ट आपने 1-2 कप यूज़ करना है। उसके बाद साबित गरम मसाला, जिसमें तेज पत्ता, दालचीनी, लौंग, काली मिर्च, साथ ही साथ हरी मिर्चें जो आपने 4 अदद ले लेनी है, और नमक हस्बे ज़रूरत, हस्बे जायका, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट आप यूज़ कर सकते हैं कुकिंग ऑयल, ऑलिव ऑयल या फिर बासमती घी।

सभी इंग्रेडिएंट्स तो आपसे मैंने शेयर कर दिए, लेकिन अभी शो में वक्त हुआ है एक अदद खूबसूरत से कलाम को, एक खूबसूरत सूफी कलाम को शामिल करने का। तो जी लिसनर्स, आइए जरा सुनते हैं ये खूबसूरत सा कलाम, और कलाम के उस पार फिर आपसे शेयर करूंगी कि किस तरह से आप चटपट इसको बना सकते हैं। सो स्टे ट्यून विद अस और सुनते रहिए रेडियो फजान 97.1 FM।

फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आप सभी ने इस खूबसूरत से कलाम को ज़रूर इंजॉय किया होगा और नुसरत फ़तेह अली साहब की खूबसूरत और मेलोडिक वॉइस ने आपके दिलों के साथ ज़रूर छेड़े होंगे। लेकिन अभी वक्त हुआ चलता है हमारे शो में एक कमर्शियल ब्रेक का। सो लिसनर्स, लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक एंड वी विल बी राइट बैक आफ्टर अ वेरी शॉर्ट ब्रेक।

0: It's commercial time.
1: रूह को महका देने वाली एक यादगार शाम, लाइव कव्वाली परफॉर्मेंस, गेस्ट ऑफ ऑनर उस्ताद रफाकत अली खान एंड हमनवा ऑन स्पेशल इवेंट बकरा मुबारक 2026, इश्को सुरूर की महफिल, कव्वाली नाइट 26 मई 2026 शाम 6 बजे से रात गए तक। तशरीफ लाना मत भूलिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। Excelsi Nawab, Lotus Road, Nottingham, NG5 1EL. For details, please contact 07715299779 or 07552538250. UK's biggest multicultural Eid festival, Bakra Mubarak 2026.
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार, यार सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ, ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ, और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं, चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा
4: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
2: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है, होम डिलीवरी के लिए अभी रابطہ करें 0115-929-8484 या 0770210793
5: Ariana Supermarket 126132 Grassington Road NG8 3P Nottingham Monday to Saturday 8 AM to 8 PM Sunday 10 AM to 8 PM Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
6: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
7: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
6: अरे जाने दें, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
7: आय हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
6: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
7: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
8: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
6: Park Foods, जो नाम है मायार का।
9: Discover the authentic taste of the Middle East at Mariah Restaurant in Tooting with a breakfast experience full of rich Arabic flavors. Enjoy freshly baked manioche straight from the oven, topped with delicious melted cheese, warm traditional breads, creamy hummus and crispy fresh falafel prepared daily.
10: And when you're ready for something truly unforgettable, treat yourself to Mariah's signature dish, the legendary Especial Mandi, slow-cooked, aromatic and rich with traditional spices.
9: From breakfast and brunch to lunch, dinner and takeaway, Mariah Restaurant brings quality food and excellent service together under one roof. Open daily from 9:30 a.m. till 10:30 p.m.
10: Visit us at 136-138 Alfreton Road, Nottingham.
9: Or place your order today on 0759-315-0669. Mariah Restaurant.

बैक वंस अगेन एक बार फिर से आई एम योर होस्ट ज़ैनब फातिमा एंड यू आर लिसनिंग रेडियो फ़ज़ा 97.1 FM जहां मिलती है आपको इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड एंटरटेनमेंट। जैसे कि लिसनर्स एक बार फिर से बताती चलती हूं कि 01157100971 है हमारे स्टूडियो का नंबर। सो आप इस नंबर के जरिए से अपने नाम के साथ साथ कोई भी प्यारा सा पैगाम हमें लिखकर भेज सकते हैं और बात कीजिए किस तरह से आप हमें लाइव ट्यून कर सकते हैं। सो उसके लिए आपको जाना होगा radiofaza.com.uk की वेबसाइट पर। सो आप गूगल क्रोम के थ्रू radiofaza.com.uk की वेबसाइट पर जा सकते हैं और वहां जाकर हमें ट्यून कर सकते हैं। और अगर आपको चाहिए डेली अपडेट्स और आप रहना चाहते हैं हमारे साथ कनेक्टेड, सो उसके लिए आप हमारी एप्लीकेशन रेडियो फजा 97.1 FM को अपने फोन में इंस्टॉल कर सकते हैं।

तो लिसनर्स, जैसा कि ब्रेक से पहले मैंने आपसे इंग्रेडिएंट्स तो शेयर कर दिए थे, लेकिन अभी हमारा स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर रहता था, तो आई थिंक मेरे तमाम दल लिसनर्स को काफ़ी बेसब्री से इंतज़ार होगा कि किस तरह से ये इंटरेस्टिंग क्यूरियस सा पुलाव बनेगा। सो चलिए चलते हैं और इसके स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर को आपसे शेयर करते हैं। सो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने ले लेना है कोई भी पैन, कोई बर्तन, कोई पतीला जो भी आपके पास अवेलेबल हो। आपने क्या करना है, ऑयल को अच्छी तरह से गर्म कर लेना है। ऑयल गर्म जैसे ही आपका हो जाए तो आपने उसमें ऐड करना है प्याज और साबित गर्म मसाला। अच्छा, इन दोनों चीज़ों को ऐड करके आपने प्याज को ज़्यादा ब्राउन नहीं होने देना, क्योंकि अक्सर औकात क्या होता है कि हम कोई सालन जब बना रहे होते हैं या फिर हम चावल बना रहे होते हैं, सो द वन मिस्टेक जो आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल करते हैं वो ये करते हैं कि हम जब सालन बनाते हैं तो हम अपने प्याज को थोड़ा सा ज़्यादा ब्राउन कर देते हैं, इसलिए कि हमारे जो सालन का रंग है वो थोड़ा डार्क, थोड़ा थिक दिखेगा। लेकिन जब हम पुलाव या फिर बिरयानी या फिर इस तरह से चावल बना रहे होते हैं, सो द फर्स्ट थिंग दैट मेक श्योर इज़ कि आपने बिल्कुल भी प्याज को ज़्यादा ब्राउन नहीं होने देना, क्योंकि इस तरह से क्या होगा, अगर आपका प्याज ज़्यादा ब्राउन हो जाएगा तो आपके जो चावलों का कलर है वो डार्क हो जाएगा और वो बिल्कुल भी दिखने में अच्छे नहीं लगेंगे, प्रेजेंटेबल नहीं लगेंगे। सो इस चीज़ का, इन छोटी छोटी चीज़ों का जब भी आप कुकिंग कर रहे हों तो हल्का सा ध्यान रखें। सो जैसे ही आपका प्याज ब्राउन हो जाए, बिल्कुल थोड़ा सा ब्राउन हो जाए और हल्का हल्का सा, आपने क्या करना है, इसके अंदर आपने शामिल कर देने हैं टमाटर, टमाटर के साथ हरी मिर्चें, और फिर आपने ऐड करना है इसमें नमक और इनको अच्छी तरह से 3 मिनट के लिए पका लेना है। इतना पकाना है कि जो टमाटर हैं उनका पानी अलग हो जाए और साथ ही साथ जो मिर्चें हैं वो भी अच्छी तरह से पक जाएं। इसके साथ ही आपने शामिल कर देना है दही, और दही शामिल करते ही आपने वो तमाम तर वेजीज जो आपने कट करके रखी थी बिल्कुल अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग, वो सभी वेजिटेबल्स आपने इसमें शामिल कर देनी है। अब आपने क्या करना है, इनको अच्छी तरह से 4 से 5 मिनट के लिए पकाना है और इस दौरान आपने थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाना है, क्योंकि वेजिटेबल्स को पकने के लिए ज़रूरत होती है पानी की। अगर आप पानी नहीं ऐड करेंगे तो क्या होगा कि आपका जो मसाला है, यानी कि आपका जो बैटर है, वो नीचे लगना शुरू हो जाएगा और जलना शुरू हो जाएगा। सो जब आप वेजिटेबल्स को पका रहे हों तो साथ साथ थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते रहें।

अच्छा अब आपने क्या करना है, इसके अंदर आपने पानी शामिल कर देना है। अच्छा अच्छा, चावल और पानी इनका तनासब आप किस तरह से नोट करें कि अगर आपके जो राइस हैं, चावल हैं, वो 2 कप हैं तो आप इसके अंदर 3.5 कप पानी ऐड कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके चावल जो नहीं है वो 4 कप हैं तो आप इसके अंदर 7 कप पानी ऐड कर सकते हैं। सो जितने आपके चावल होंगे उससे 1 पॉइंट ज़्यादा, जैसे कि अगर 2 कप चावल हैं तो आपने 3 कप पानी ऐड करना है, और अगर 4 कप चावल हैं तो आपने 7 कप पानी ऐड करना है। तो इस तनासब से आपके पास जितने चावल अवेलेबल हैं आप इसके अंदर पानी डाल दें और वेट करें 2 से 3 मिनट। जैसे ही आपके पानी के अंदर उबाल आना शुरू हो जाए तो आपने अब क्या करना है, इसके अंदर वो तमाम तर चावल जिन्हें आपने भिगो के रखा था उन चावलों को आपने बीच में शामिल कर देना है। खास तौर पे उस वक्त जब आपका जो पानी है वो तकरीबन खुश्क हो जाए, बिल्कुल थोड़ा सा रह जाए, तो आप इसके अंदर ये चावल शामिल कर दें, और चावल शामिल करने के 2 से 3 मिनट बाद आप इसके अंदर कसूरी मेथी जस्ट अ टाइनी अमाउंट ऐड कर दें और थोड़ा सा गर्म मसाला। अब आपने इसे बिल्कुल लो फ्लेम पर दमा पर लगा कर रख देना है सिर्फ 4 से 5 मिनट के लिए। बिल्कुल भी टाइम का आपने प्रॉपर ध्यान रखना है ताकि जो आपके चावल हैं वो ज़्यादा जले नहीं, ख़राब नहीं हों। आई थिंक 5 मिनट इज़ इनफ। अगर आप कोई भी पुलाव बना रहे हैं या कुछ भी किसी भी तरह के चावल बना रहे हैं सो इतना टाइम पीरियड इज़ इनफ। आपने दमा लगा के रख देना है और जैसे ही 5 से 6 मिनट हो जाएं तो आपका मज़ेदार सा पुलाव हो गया तैयार। देखा आपने कितना सिंपल सा था, कितना बेसिक सा था, और वही सब इंग्रेडिएंट्स थे जो नॉर्मली हमारी फैमिलीज में, हमारे घरों में मौजूद होते हैं, लेकिन जब आप इसको खाएंगे तो टेस्ट वाइज इसका टेस्ट, इसका अरोमा आपको काफ़ी डिफरेंट लगेगा, काफ़ी फ्यूजनल लगेगा। सोचे लिसनर्स, ये थी हमारी आज की फ्राइडे किचन की रेसिपीज। अच्छा आज मेरा फोकस इस चीज़ पर था कि मैं अपने उन तमाम तरह लिसनर्स को टारगेट करूं जो कि वेजिटेरियन हैं, क्योंकि हम क्या करते हैं, हम दूसरी मीट रेसिपीज़ तो बहुत ट्राई करते हैं और बहुत शौक से भी खाते हैं, और हम एशियन फैमिलीज़ में तो वैसे भी मीट को बहुत पसंद किया जाता है, लेकिन इस सभी में क्या होता है कि वो तमाम तर लोग जो कि वेजिटेरियन होते हैं, मीट लवर नहीं होते, उनके लिए अच्छे ऑप्शंस नहीं बच जाते। सो मैंने सोचा कि अपने उन तमाम तर लिसनर्स की इस समस्या को आज दूर किया जाए और थोड़ा उनके लिए भी सोचा जाए। सो वेल, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपीज अच्छी लगी होंगी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा इन रेसिपीज़ को, और ट्राई करने के बाद मुझे बताइएगा कि आपको इनमें क्या चीज़ अच्छी लगी, क्या चीज़ नहीं अच्छी लगी, और मज़ीद क्या चीज़ इम्प्रूव हम कर सकते हैं। जी तो लिसनर्स, 01157100971 इस नंबर पर जाकर अपना फीडबैक मुझसे शेयर करिएगा, आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। अभी वक्त हुआ चलता है शो में एक अदद खूबसूरत से सूफी कलाम को शामिल करने का। तो जैसा कि आज फ्राइडे है और शो के स्टार्ट में भी मैंने कहा कि कोशिश करिए कि आज के दिन को ज़्यादा से ज़्यादा इबादत में, नेक कामों में, अपनी ज़िंदगी को संवारने में गुजारें, क्योंकि एक इंसान की असल कामयाबी वही होती है जो कि उसका और उसके परवरदिगार का कनेक्शन होता है। डेली बेसिस पे आप जितनी भी स्ट्रगल कर लें, जितनी भी मेहनत कर लें, जितना भी हार्डवर्क कर लें, वो सब किस चीज़ में काउंट होता है, आपके दुनियावी बेनिफिट्स में। लेकिन इंसान का असल बेनिफिट क्या होता है कि अपनी आखिरत को संवारना। तो कोशिश करिए कि आज के दिन को ज़्यादा से ज़्यादा नेक कामों में सर्व करें, अपनों के साथ मिल बैठें, उनके साथ टाइम स्पेंड करें, और उन तमाम तर लोगों को ऑब्जर्व करें जिन्हें आपके साथ की और आपके वक्त की ज़रूरत है। चलिए सुनते हैं ये खूबसूरत सा सूफी कलाम और फिर आगे गुफ्तगू का सिलसिला बढ़ाते हैं।

अब बारी आती है उस चीज की, उस टॉपिक के ऊपर बात करने की जो कि एक असली डीवा की पहचान है। एक असली डीवा हमेशा वही होती है जो अपने खाने के साथ साथ अपनी सेल्फ केयर का भी पूरा ख्याल रखती है। कहा जाता है कि ब्यूटी इज नॉट अबाउट हैविंग अ फ्लॉलेस फेस, इट्स ऑल अबाउट हैविंग अ फ्लॉलेस हार्ट एंड अ फ्रेश माइंड। सो कोशिश करिए कि आप अपने फेस के साथ साथ अपने माइंड को, अपने हार्ट को, इन दोनों चीज़ों को भी फ्रेश रखें, एनर्जेटिक रखें, क्योंकि कहा जाता है कि पीपल फील सेटिस्फाई व्हेन दे फील इंटरनली सेटिस्फाइड। तो सेटिस्फाई होने के लिए, फ्रेश दिखने के लिए, फ्रेश होने के लिए द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि आप नेचुरली ग्लो करें, आप अंदर से सुकून में हो, आपका माइंड सेट सॉफ्ट हो, रिलैक्स हो। अक्सर बाजू का क्या होता है, आप सभी भी इस चीज़ को रिलेट करते होंगे कि हमारी लाइफ में सडनली बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आ जाता है, बहुत ज़्यादा एंजाइटी, टेंशन, एक साथ जब बहुत से काम पेंडिंग्स पड़ जाते हैं तो हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं और उसी स्ट्रेस के चलते चलते हमारा जो स्किन कलर है वो बहुत ज़्यादा डल हो जाता है। आपने ये चीज़ देखी होगी, या फिर जब कभी आप अचानक से बहुत ज़्यादा बीमार हो जाओ तो ऑटोमेटिकली आपका जो स्किन कलर होता है वो डल हो जाता है। इट्स बिकॉज कि आप जो नहीं है मेंटली तौर पर अंदर से जो नहीं आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होते हो, जिसका असर आपके फेस पर पड़ता है, आपकी स्किन पर पड़ता है। सो कोशिश करिए कि बी पॉजिटिव एंड जस्ट फोकस ऑन योर सेल्फ और बी लाइक अ दीवा जो कि अंदर से भी और बाहर से भी दोनों जहाँ से ग्लो करती हैं। तो लिसनर्स, आज भी आप सभी के लिए लाई हूँ आज की फ्राइडे सीक्रेट रिचुअल रेमेडीज, यानी कि ऐसी ब्यूटी टिप्स जो आपके मूड को और आपके चेहरे को दोनों को इंस्टेंटली फ्रेश लुक देगी और आपको ग्लोइंग बनाएगी बिना किसी साइड इफेक्ट के, क्योंकि टोटली ऑर्गेनिक चीज़ें जो होती हैं इनकी बेस्ट थिंग ये होती है कि ये आपको बहुत ज़्यादा नेचुरल ग्लो देती हैं, क्योंकि इनमें विटामिन्स होते हैं, इसमें बहुत सारे कैल्शियम्स होते हैं, जिंक ऑक्साइड होता है और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो कि नेचुरली स्किन के अंदर जाके स्किन को हील करते हैं। सो ग्रैब योर नोटबुक एंड लिसन वेरी क्लोजली। सो आज की जो फर्स्ट हमारी ब्यूटी टिप है, यानी कि ब्यूटी रेमेडी है, वो है क्यूकम्बर मिंट स्किन कूलर। अक्सर क्या होता है, गर्मियों में हम क्या करते हैं, किचन में बहुत सारा काम काज करते हैं तो हमारी जो स्किन है वो फ्लश और ऑयली सी हो जाती है। आप सभी ने भी ये चीज़ नोट की होगी कि जो ऑयली स्किन वाले हैं उनका तो ये कॉमन प्रॉब्लम है थ्रू आउट द होल सीज़न, गर्मियाँ हो, सर्दियाँ हो या हो फिर कोई और मौसम। लेकिन जो ड्राई स्किन के लोग होते हैं उन्हें भी ये एक चीज़ फेस करनी पड़ती है कि जब गर्मियाँ होती हैं तो किचन में बहुत सारा काम करने की वजह से चेहरे पे बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑयल दिखने लगता है, स्किन बिल्कुल भी फ्रेश नहीं दिखती और बहुत ज़्यादा डल डल हो जाती है। सो इसके लिए आपने क्या करना है, आपने ले लेने हैं क्यूकम्बर, इसका यानी कि खीरे का रस आपने अच्छी तरह से निकाल कर, और इस रस को साथ ही साथ आपने रोज़ वाटर और साथ ही साथ आपने क्या ले लेने हैं, 2 से 3 अदद मिंट, मिंट के जो पेटल्स हैं इनको लेके आपने अच्छे से क्रश करके मिक्स कर लेना है। अब इसे एक स्प्रे बॉटल के अंदर डालकर फ्रीजर में रख देना है। अब आपने इसको यूज़ किस तरह से करना है, जब भी आप किचन से फ्री हों या नमाज के बाद या फिर आप फ्रेश हों और आपने फेस अच्छी तरह से क्लीन कर लिया हो तो आपने क्या करना है, अपने चेहरे पर इसका एक स्प्रे कर देना है। It instantly lowers your skin temperature and brings you a natural pinkish glow. So, ये क्या करेगा कि आपकी जो स्किन है उसकी टेम्परेचर को नॉर्मल करने में आपको हेल्प आउट करेगा और साथ ही साथ आपकी स्किन पे एक निखार लेकर आएगा, एक ग्लो लेकर आएगा और जो इतना भी एक्स्ट्रा एक्सेसिव ऑयल है उसको रिमूव कर देगा। ये दुनिया का सबसे सस्ता और बेस्ट नेचुरल इंग्रेडिएंट है फॉर योर स्किन। क्यूकम्बर में ऐसे विटामिन्स पाए जाते हैं, ऐसे ऑक्साइड्स पाए जाते हैं जो ना सिर्फ आपके फेस को, इवन कि आपके डार्क नकल्स को, उसके बाद बाजू का ऐसा होता है कि हम धूप में जाते हैं हमारी स्किन बहुत ज़्यादा डल हो जाती है, उस एक चीज़ को, डार्क सर्कल्स को और भी बहुत से ऐसे स्किन के प्रॉब्लम्स हैं जिनको क्यूकम्बर की मदद से सॉल्व किया जा सकता है। तो ये थी हमारी आज की पहली ऑर्गेनिक ब्यूटी टिप। चलिए बढ़ते हैं अगली ब्यूटी टिप की जानिब। वैसे भी लिसनर, जहाँ बात की जाती है खूबसूरती की तो वहीं से मुझे एक छोटी सी, एक खूबसूरत सी कहानी याद आ गई, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज के इस दिन में हम सभी के लिए एक सबक आमोज

0: कहानी सुनाई जाए तो एक मरतबा एक बहुत ही अमीर और एक बहुत ही हसीन लड़की एक बहुत बड़े दरवेश के पास गई। अच्छा, वो लड़की बहुत महंगा लिबास पहनती थी, बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन मेकअप यूज़ करती थी, और जैसा कि जो कि वो बहुत ज़्यादा अमीर थी, तो आप रिलेट कर सकते हैं कि रिच पीपल्स की क्या ट्रेडिशन होते हैं, क्या चीज़ें वो फॉलो करते हैं, तो लगभग वो कुछ इसी तरह की थी। लेकिन उसके चेहरे पर ना एक अजीब सी उदासी थी, एक अजीब सी ना बेरोनगी थी। तो उन्होंने जो दरवेश थे उन्होंने कहा, जैसे कि उन हजरत ने कहा कि दुनिया का सबसे महंगा मेकअप तुम लगाती हो फिर भी तुम इतनी उदास हो, तुम्हारे चेहरे पे वो रौनक नहीं है, कोई खुशी नज़र नहीं आ रही और वो सुकून नहीं नज़र आ रहा जो होना चाहिए। इस पर उस लड़की का कहना ये था कि मैं चाहती हूँ कि मेरे चेहरे पर भी वो सुकून दिखे, तो मैं क्या करूँ। दरवेश ने मुस्करा के एक पुराना मिट्टी का धागा उठाया और आईना निकाला और उसे साफ किया। फिर उन्होंने बोला, बेटी तुम चेहरे को तो दुनिया का सबसे बेहतरीन रंगों से संवार रही हो, लेकिन जो तुम्हारी सोल है उसे तुम बिल्कुल भी नहीं संवारी, यानी कि तुम अपनी सोल पे कोई काम नहीं कर रही, तुम्हारे अंदर हसद है, गुस्सा है, नाशुक्री है, इसके साथ साथ तुम अपनी लाइफ को दूसरों से कंपेयर करती हो। जब तक तुम अंदर का आईना साफ नहीं करोगी बाहर का कोई भी रंग तुम पर नहीं चढ़ सकता। तो लिसनर्स, इस कहानी से हमें क्या चीज़ सीखने को मिलती है कि जो ब्यूटी होती है वो कम्स विद द हार्ट, नॉट कम्स विद योर फेस। फेस को प्रिटी बनाना, फेस को ग्लोइंग बनाना, इट्स ओके, इट्स रियली नेसेसरी, क्योंकि जैसा कि आजकल के इस दौर में एक ट्रू दीवा वही होती है जो सेल्फ केयर करती है, स्किन केयर करती है। लेकिन यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इम्पोर्टेंट बात है जिसे हमें, मुझे, आपको, हम सभी को समझने की ज़रूरत है, वो कुछ ये है कि आपको क्या करना चाहिए कि अपने चेहरे पर ध्यान देने के बजाय अपनी सोल पर ध्यान देना चाहिए, अपनी पर्सनैलिटी पर ध्यान देना चाहिए, अपने किरदार पर ध्यान देना चाहिए। जब आप अंदर से ही नेचुरल तौर पर ग्लो करोगे, आप एक अच्छे इंसान बनकर उभरोगे, दूसरों के साथ अच्छे रिलेशंस बनाओगे, हमेशा पॉजिटिव रहोगे, नेगेटिविटी को, नेगेटिव चीज़ों को, नेगेटिव थॉट्स को माइंड से निकालोगे, तभी आप बाहर से भी ग्लो करोगे। सो इस कहानी से हमें यही चीज सीखने को मिलती है कि सबसे पहले अंदरूनी तौर पर ग्लो करो, फिर बैरूनी तौर पर ग्लो करो। अच्छा, बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि अंदर से किस तरह से ग्लो करना है। सो काइंडनेस इज द बेस्ट इंग्रेडिएंट फॉर योर इनर ग्लो। सो कोशिश करें कि बी काइंड टू योर सेल्फ एंड बी काइंड टू द अदर पीपल्स दैट एग्जिस्ट इन योर लाइफ। जैसे कि आज फ्राइडे है, चलिए एक अहद करते हैं, एक वादा करते हैं कि आज हम अपने साथ साथ अपने आसपास के उन सभी लोगों का ख्याल रखेंगे, उनको ऑब्जर्व करेंगे जिनकी लाइफ हमसे कनेक्टेड है और मे बी उन्हें हमारे एहसास की, हमारे प्यार की, हमारी मदद की ज़रूरत हो। जी तो लेडीज, जल्दी से अभी उठाइए फ़ोन 01157100971, इस नंबर पर जाकर मुझे मैसेज करके बताइए कि आपको ये कहानी कैसी लगी और आपको इसमें से क्या इंस्पिरेशन मिली। जी तो लिसनर्स, वक्त हुआ चलता है एक अदद कमर्शियल ब्रेक का। सो चलिए चलते हैं कमर्शियल ब्रेक की जानिब, आपसे मुलाकात होगी ब्रेक के उस पार।
1: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
2: ओए खुशियां मनाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ।
1: आज तो बहुत खुश लग रहे हैं, खैर तो है।
2: मेरी बीवी का वीजा हो गया जी।
1: ओहो मुबारकबाद, बहुत जल्दी आ गया।
2: सारी नसीब दी गल है, मैं लोकल वीजा मायरीन दी मदद ली सी जी।
1: उनका नाम ही बता दे, हमें भी कभी जरूरत पड़ सकती है।
2: AMH सॉलिसिटर्स, होर कौन, ओ वधिया ने, दोस्ताना माहौल, तेज ते जल्दी काम करदे ने, सोने ते सुहागा ए, क्यों हर तरह दा वीजा एक्सटेंशंस, इनडेफिनेट लीव टू रिमेन और सिटीजनशिप एप्लीकेशंस भी करदे ने।
1: चलें उनका पता भी बता दें, आपको तो जुबानी याद होगा।
2: हां जी क्यों नहीं, नॉटिंगम रोड, न्यू बेसफोर्ड, नॉटिंगम।
1: जबरदस्त, मैं उनसे राबता करूंगी अपनी फैमिली के वीजा के लिए। नंबर क्या है?
2: लो जी ओ भी जुबानी याद है, 0115-671-3677, प्योर जिम दी बिल्डिंग विच ने, मुफ्त मशवरा लो जी।
3: AMH Solicitors, Immigration Lawyers at Sovereign House, 184 Nottingham Road, New Basford, Nottingham NG7 7BA. Large free car park available, or call them on 0115 671 3677.

0: ईद उल अधा की खुशियों को ग्रैंड स्टाइल में सेलिब्रेट करें। ZK इवेंट्स और रेडियो फजा ला रहा है इस चांद रात को जबरदस्त इवेंट बकरा मुबारक 2026, एक यादगार चांद रात एक्सपीरियंस। 26th of May 6 PM टिल लेट, सिर्फ शॉपिंग नहीं पूरी फैमिली के लिए एंटरटेनमेंट का धमाका, फूड स्टॉल्स, फैमिली फन, ईद वाइब्स और नॉन स्टॉप एक्साइटमेंट। तो इस चांद रात मिलते हैं बकरा मुबारक 2026 में, एक्सेलसियर नवाब, लोटस रोड, नोटिगम, NG5 1EL।
1: बड़ी ईद की बड़ी खुशियों में आपके साथ साथ मराया रेस्टोरेंट। मराया रेस्टोरेंट की जानिब से तमाम अहले नोटिगम को बड़ी ईद की बड़ी खुशियां बहुत बहुत मुबारक। तकबलुल्लाह मिन्ना व मिनकुम।
2: Planning a wedding, reception, or special celebration? Discover Excelsior Nawab, Nottingham's brand new renovated banqueting venue. A beautifully designed indoor marquee concept featuring sparkling traditional chandeliers, stunning LED lighting throughout, and elegant decor.
3: Enjoy venue hire, tables and chairs with table linen, chair covers, centerpieces, stage and walkway decor, a delicious three-course meal, drinks, professional waiter service, and a dedicated supervisor on the day.
2: Fully air-conditioned, with modern kitchen facilities, a spacious foyer reception area, located just 1 mile from Nottingham City Center at 5-7 Lourdes Road, NG51EL.
3: Excelsior Nawab. Where your special moments become unforgettable.
4: You are listening Islamic Transmission on Faza 97.1 FM and DAB. You are listening Islamic Transmission on Faza 97.1 FM and DAB.
5: आप सुन रहे हैं इस्लामी नशरियात फजा 97.1 FM और DAB पर।
4: You are listening Islamic Transmission on Faza 97.1 FM and DAB.
5: आप सुन रहे हैं इस्लामी नशरियात फजा 97

वेलकम बैक माय इनक्रेडिबल लिसनर्स, मैं हूं आपके होस्ट ज़ैनब फातिमा। आप सभी को वेलकम करती हूं आपके फेवरेट शो द दीवा डायलॉग विद रेडियो फजा 97.1 FM, जहां आपको मिलती है इंफॉर्मेशन, आपको मिलती है कम्युनिकेशन और आपको मिलती है बहुत सारी इंटरटेनमेंट। जी तो लिसनर्स, जैसा कि इस इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन एंड एंटरटेनमेंट के पैटर्न को लेकर चलते चलते आपको और मुझे तकरीबन अब पूरे 2 घंटे होने के करीब ही हैं। जैसा कि शो के स्टार्ट में भी मैंने कहा था कि, और आज का हमारा कोट ऑफ द डे भी यही कहता है कि इंसान को कभी भी सेल्फ डाउट नहीं करना चाहिए, अपना खुद का कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना चाहिए। बी इन योर सेल्फ एंड जस्ट फोकस ऑन योर गोल्स, ऑन योर ड्रीम्स एंड फोकस ऑन द पाथ जहाँ आपको लगे कि आपके ड्रीम्स फुलफिल हो सकते हैं। लेकिन अगर आप पहले ही डर जाएंगे, आप सोचना शुरू कर देंगे कि नो, ये मैं नहीं कर सकता या ये चीज़ मुझसे नहीं हो पाएगी, तो आप लाइफ में कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। जैसा कि आज जुमातुल मुबारक का नेक दिन है, सो आज के दिन की निस्बत आप अपनी लाइफ को बिल्कुल एक तरतीब से, जैसे कि एक टूटे फूटे ट्रैक से वापस से एक सीधे ट्रैक पर लेकर आएं। अगर आपको लगता है कि आप बहुत सारे काम हैं जिनको आप ठीक तरीके से नहीं कर रहे हैं, तो उन पर ध्यान दें, त्वचा दें, क्योंकि लाइफ इज़ वेरी अनप्रिडिक्टेबल, यू नेवर आइडिया कि नेक्स्ट मोमेंट में क्या हो जाए। सो कोशिश करें कि अपनी जितनी भी जिंदगी आपके पास मौजूद है इसे संवारें और इसे अच्छे कामों में सर्व करें। और जैसा कि आज फ्राइडे का दिन है, सो आज के दिन कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा नेक काम करें, इबादत करें, ढेर सारा दुरूद शरीफ पढ़ें और अल्लाह ताला के साथ अपने इस कनेक्शन को मजबूत कर लें, क्योंकि यही एक चीज़ है जो आपके काम आएगी, यही एक चीज़ है जो कि आपकी इस ज़िंदगी का, इस लाइफ का पर्पस है। हम सभी लोगों का दुनिया में आने का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है कि हम अल्लाह ताला को याद करें, उनकी इबादत करें और अपनी ज़िंदगी को इस मुताबिक चलाएं कि हम अल्लाह की खुशनुदी हासिल कर सकें। लेकिन हम इंसान क्या करते हैं, आप में, मैं आपकी बात नहीं कर रही, मैं ओवरऑल हम सभी लोगों की बात कर रही हूं कि हम क्या करते हैं कि हम अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में अपने दुनियावी कामों को रखते हैं। हम इस चीज़ पे फोकस करते हैं कि हमारे डेली बेसिस के बिजनेस वर्क, डेली बेसिस के जो काम काज हैं वो अच्छे से हों, वो प्रॉपरली हों, उन्हें हम प्रॉपरली टाइम दें। लेकिन जिस एक चीज़ को हमें टाइम देने की ज़रूरत है वो है अल्लाह के साथ अपने कनेक्शन को, यानी कि आपको अपने कनेक्शन को मजबूत करने की, उसे स्ट्रॉन्ग करने की और बिल्ड करने की ज़रूरत है। जिस चीज़ को हम इग्नोर कर देते हैं और फिर हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारी लाइफ में इतनी हर्डल्स, इतनी डिफ़िकल्टीज क्यों हैं। अगर आप अल्लाह को याद करें, डेली बेसिस पर अल्लाह के साथ अपने कनेक्शन को मजबूत करें, तो आप इस चीज़ को रियलाइज़ करेंगे कि आपकी लाइफ में कभी भी कोई हर्डल, कोई डिफ़िकल्टी, कोई मुश्किल आ ही नहीं सकती, क्योंकि जिनके साथ अल्लाह की सपोर्ट होती है वो हमेशा लाइफ में कामयाब होते हैं। जी तो लिसनर्स, अभी वक्त हुआ है हमारे शो के उस सेगमेंट का जिसका मुझे और आपको, बल्कि हम जितने भी हमारे लेडीज हैं उन सबको रहता है बेसब्री से इंतज़ार, क्योंकि इस सेगमेंट में हमें साथ ही साथ मोटिवेशन मिलती है, साथ ही साथ इंस्पिरेशन मिलती है। और वो जो तमाम तर फीमेल्स हैं जिन्हें लगता है कि उनके पास रिसोर्सेज नहीं हैं, उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं हैं, वो आगे नहीं बढ़ पाएंगी, ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाएंगी, उन्हें भी एक होप मिल जाती है कि अगर ये दीवाज, ये फीमेल लेडीज़, ये इंस्पिरेशनल वूमेंस ये सब कर सकती हैं, तो वाई नॉट, हम क्यों नहीं। सो जी, आज भी आपके लिए लाई हूँ एक ऐसी ही खूबसूरत सी, प्यारी सी टीवा की कहानी। अक्सर लोग सोचते हैं कि दुनिया में बड़े बड़े जी तो लिसनर्स, अक्सर लोग सोचते हैं कि दुनिया में जितनी भी बड़ी बड़ी चीजें हैं, जितने भी बड़े बड़े अनोखे काम हैं, वो सब किसने किए हैं, वो सब मर्दों ने किए हैं। लेकिन इस्लाम की तारीख में एक ऐसी औरतें भी मौजूद हैं, एग्जिस्ट करती हैं, जिन्होंने दुनिया को तालीम, तरक्की और रोशनी इन जैसी भारी चीज़ों के जेवर से आरास्ता किया। द लिंक ऑफ द स्कॉलर इज मोर होली देन द ब्लड ऑफ द मर्टी। आज हम दास्तान सुनेंगे 19th century की उस दीवा की, जिन्होंने अपना पूरा मज़ा और अपनी पूरी दौलत को दुनिया का सबसे बड़ा मकसद यानी कि एजुकेशन, तालीम के लिए कुर्बान कर दिया, वक्फ कर दिया। चलिए सफर करते हैं मोरक्को की उस हसीन सी शहर में, जहां फातिमा अल फेहरी ने तारीखी तौर पर एक नया कदम उठाया और कुछ नया करके दिखाया। अगर बात की जाए फातिमा की निजी जिंदगी की, सो फातिमा एक ऐसा
ان کی لائف میں ایک ایسا وقت آیا جب فاطمہ کے جو والد تھے ان کے بھائی اور ان کے شوہر کا ایک کے بعد ایک انتقال ہوتا چلا گیا. یہ وہ وقت تھا, یہ وہ ٹائم پیریڈ کا تھا جب فاطمہ بہت زیادہ اکیلی, بہت زیادہ لونلی ہوگی. ان کے پاس کوئی بھی بلڈ ریلیشن نہیں تھا. انہیں اور ان کی بہن مریم کو والد کی طرف سے ایک بہت بڑی دولت, وراثت, انہیریٹنس ملی تھی, لیکن اب ایک عام عورت ہوتی تو وہ اس دولت سے آرام سے اپنی زندگی گزارتی, مہنگے لباس لیتی, بہت ساری ایکسپینسو چیزیں ٹرائی کرتی اور اسی طرح کر کے اپنی لائف کو ایک اچھے وے میں جی کر وہ دنیا سے چلی جاتی. لیکن فاطمہ نے عام عورتوں کی طرح نہیں کیا, بلکہ انہوں نے ایک انسپریشنل ڈیوا کی طرح سوچا کہ ویلتھ از ناٹ ٹو بی ہڈن, اٹ از ٹو بی انویسٹڈ ان دا فیوچر آف ہیومینٹی. اب اگر ہم بات کریں فاطمہ کے میڈیکل انوویشن کی, تو 1859 ہجری میں انہوں نے اپنی پوری دولت سے ایک ایسی جگہ کی بنیاد رکھی جہاں لوگ اکثر مفت تعلیم حاصل کر سکے. جی ہاں, آپ بالکل ٹھیک سمجھ رہے ہیں, فاطمہ نے ایک بہت ہی اچھی, بہت ہی بڑی یونیورسٹی کو وجود میں لایا جسٹ کہ آپ سبھی لوگ تعلیم حاصل کر سکیں, تعلیم کے زیور سے آراستہ ہو سکیں. یہ صرف ایک مسجد نہیں تھی بلکہ یہ دنیا کی سب سے پہلی ڈگری گرانٹنگ یونیورسٹی بنی. آپ کو یہ جان کر نہایت ہی حیرانگی ہوگی کہ دنیا کا مہنگا ترین یونیورسٹی جیسے کہ آکسفورڈ, ہارورڈ سے بھی زیادہ اس یونیورسٹی کو ویلیو کیا جاتا تھا اس دور میں, اس ٹائم پیریڈ میں, کیونکہ اس یونیورسٹی کو ایک مسلم عورت نے سب سے پہلے دنیا میں لایا تھا.

साथ ही साथ फातिमा ने उन तमाम दर फीमेल्स को इस चीज़ की आज़ादी दी, इस चीज़ का मौका दिया कि वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ें, वो तालीम हासिल कर सकें और तालीम के जेवर से आरास्ता हों। फातिमा के मुताबिक कि अगर आप इंटेलेक्चुअल लीडरशिप हासिल करना चाहते हैं तो आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, ज़रूरत है आपको एक अच्छी विजन की, एक अच्छे आइडिया की, एक अच्छे गोल की और साथ ही साथ तालीम की। और इस तालीम के सफ़र को फुलफिल करने में फातिमा ने तमाम तमाम मुस्लिम वुमेंस की बहुत ज़्यादा हेल्प की। अगर हम बात करें फातिमा की अपनी ज़िंदगी की तो उन्होंने इंतहाई सादा, इंतहाई सिंपल सी ज़िंदगी गुजारी और इसी तरह से इस ज़िंदगी को गुजार कर वो इस दुनिया से चली गई। अगर हम फातिमा फहरी की बायोपिक से कुछ सीखें तो हमें इनकी ज़िंदगी से जो चीज़ सीखने को मिलती है वो ये है कि योर लेगेसी इज़ नॉट व्हाट यू लीव फॉर पीपल, इट्स व्हाट यू लीव इन पीपल। आपकी असल कामयाबी ये नहीं कि आप लोगों के लिए क्या छोड़कर जाते हैं, बल्कि ये है कि आप लोगों के दिलों में, दिमाग में क्या छोड़कर जा रहे हैं। जैसे कि फातिमा ने अपने इन इक़दामात से, अपने इस खूबसूरत से विजन से दुनिया के लिए ना सिर्फ यूनिवर्सिटी बनाई तो बनाई, बल्कि उन तमाम तर फीमेल्स के दिल में ये एक चीज़ भी छोड़ दी कि अगर औरतें चाहें तो औरतें किसी से कम नहीं, वो मर्दों के मुकाबले में सोसाइटी में मूव कर सकती हैं, आगे बढ़ सकती हैं, बहुत से कामकाज कर सकती हैं। एम्पावरमेंट स्टार्ट्स विद एजुकेशन। सो अगर आप एम्पावरमेंट में आना चाहते हैं, आप पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं, आप इंजीनियर बनना चाहते हैं, आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, सो द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज़ यू हैव टू कम्प्लीट योर एजुकेशन फर्स्ट। सो इसी सब चीज़ों को माइंड में रखते हुए फातिमा ने बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स बनाए और आज हमारी बहुत सी बहनें ऐसी हैं, बहुत सारी माएँ ऐसी हैं जिन्होंने इन्हीं यूनिवर्सिटी से, इन्हीं तालीमी इदारों से तालीम हासिल की और आज वो दुनिया के बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स पर एग्जिस्ट कर रही हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज में, मल्टीनेशनल कंपनीज में काम कर रही हैं। फातिमा ने साबित किया कि अगर इंसान की नीयत साफ हो तो उसका मकसद अगरचे बड़ा भी हो लेकिन अल्लाह ताला रास्ते खुद ब खुद निकाल देता है। तो इसी माइंडसेट को माइंड में रखते हुए फातिमा ने अपनी ज़िंदगी में ये बड़े बड़े इकदाम किए एंड आई थिंक आप सभी को इनकी ज़िंदगी से बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। वैसे देखा जाए तो अगर उनकी जगह वाकई अगर मैं इमेजिन करूँ, उनकी सिचुएशन से रिलेट करूँ, तो अगर उनकी जगह इनके शक्ल में भी होती तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं भी ऐसा ही सोचती कि मुझे अपनी तालीम से अपनी लाइफ को इम्प्रूव करना चाहिए, खुद के लिए कुछ करना चाहिए, क्या ज़रूरत है दूसरों के लिए करने की। लेकिन उनका विजन, उनका जो सपना था वो इन सब चीज़ों से बहुत बड़ा था, इसीलिए उन्होंने तमाम तर मुस्लिम्स के लिए, स्पेशली वुमेंस के लिए बहुत सारी न्यू अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट की और इसी सब से न्यू एंटरप्रेन्योरशिप्स भी सोसाइटी में एग्जिस्ट किए और एंटरप्रेन्योरशिप्स को भी आइडिया मिला, थ्योरी मिली और कॉन्सेप्ट मिला कि किस तरह से रिसोर्सेज को प्रॉपरली यूज़ करके आप कुछ भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। सी तो लिसनर्स, कैसी लगी आपको द इंस्पिरेशनल दीवा की स्टोरी? अगर पर्सनली आप मुझसे पूछे तो मुझे बहुत अच्छी लगी, बहुत इंस्पायरिंग थी और इनकी ज़िंदगी से मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला, काफ़ी कुछ जानने को मिला। वेल, इस बारे में आपका क्या ख्याल है कि अगर ये यूनिवर्सिटी उस दौर में क्या में ना आती तो आज हमारी जो बहुत सी मुस्लिम वुमेंस हैं वो हो सकता है उस मुकाम पर, उस लाइफ स्टेज पर एग्जिस्ट ना कर पा रही होती। अपने ख्यालात का इजहार के लिए 0115710097 इस नंबर पर जाकर, और मैं हमेशा अपने हर शो में यही कहती हूँ कि मुझे आपके फीडबैक का इंतज़ार रहता है क्योंकि आपके फीडबैक से मुझे मोटिवेशन मिलती है, मुझे इंस्पिरेशन मिलती है अपने शो को मज़ीद इम्प्रूव करने की, मज़ीद आगे बढ़ने की। सो इसीलिए लिसनर्स, डेली बेसिस पर radiofaza.com.uk की वेबसाइट को विज़िट करते रहिए और अगर आप चाहते हैं कि आपको डेली लाइव अपडेट्स मिलती रहें बिना किसी रुकावट के, बिना किसी दुश्वारी के, सो रेडियो फजा 97.1 FM की एप्लीकेशन को फौरी तौर से इंस्टॉल कर लें। अच्छा, किस तरह से आपने हमारी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है? तरीका बहुत सिंपल सा है, आप सभी से शेयर करती हूँ। अगर आप एंड्रॉयड यूज़र हैं सो आपको जाना होगा गूगल स्टोर पर, लेकिन अगर आप हैं एप्पल यूज़र सो आपको जाना होगा एप्पल स्टोर पर। वहाँ जाकर सर्च बार में आपने सर्च करना है रेडियो फजा 97.1 FM
اور ود ان اے فیو سیکنڈز ایک پرپل کلر کا آئیکن آپ کی اسکرینس پر شو ہو جائے گا. جی ہاں, آپ بالکل ٹھیک سمجھے, یہی ہے ہمارے ریڈیو فضا 97.1 ایف ایم کی اپلیکیشن. سو جلدی سے اس اپلیکیشن کو انسٹال کر لیں تاکہ آپ کو ڈیلی اپڈیٹس ملتی رہیں اور آپ رہیں ہمارے ساتھ باخبر. جیسا کہ لسنرز, ابھی شو کا جو اختتام کا وقت ہے وہ تقریباً کافی قریب پہنچ چکا ہے, لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا شو میں یہی کہوں گی کہ شو کا اینڈ ہو رہا ہے لیکن آپ کا دن, آپ کی زندگی آپ ابھی باقی ہے. سو ان اپرچونیٹیز کو ضرور اویل کیا کریں جو آپ کو مل رہی ہوں, اور اس ڈر سے آپ بہت ساری اپرچونیٹیز کو چھوڑ دیتے ہیں, بہت ساری چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں کہ جسٹ کہ آپ کے پاس وہ ریسورسز نہیں ہیں یا پھر آپ کے اندر سیلف ڈاؤٹ ہے. تو یہ وہ چیز ہے کہ جو آپ کو فیلئر کی طرف دھکیلتی ہے. فیلئر سے بڑا ہرڈل کیا ہوتا ہے کہ آپ یہ چیز سوچیں کہ میں یہ کام نہیں کرتا جسٹ بیکاز کہ مجھے لگتا ہے میں نہیں کر سکتا. سو ایسا بالکل بھی مت سوچیا کریں, خود پر دھیان دیں, خود پر فوکس کریں. جیسا کہ آج جمعۃ المبارک کا نیک باغ برکت دن ہے, سو آج کے دن کے حوالے سے میں نے سوچا کہ کچھ ایڈوائزز ہیں جو میں اپنے لسنر سے شیئر کرتی ہوں تاکہ ان کی زندگی بھی کچھ بدل جائے.

0: It's commercial time.
1: हेलो नॉटिंघम, हम एक डेडिकेटेड लोकल डॉक्टर और यंग फादर के लिए एक अर्जेंट स्टेम सेल डोनेशन की अपील कर रहे हैं, जो इस समय अपनी जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। उन्हें अर्जेंटली एक लाइफ सेविंग स्टेम सेल ट्रांसप्लांट की जरूरत है, लेकिन अफसोस अभी तक उनका साउथ एशियन मैच कहीं नहीं मिला है। हम पूरी साउथ एशियन कम्युनिटी से गुजारिश करते हैं कि प्लीज आगे आए और इस फादर की मदद करें। हम एक डोनर ड्राइव होस्ट कर रहे हैं ICCA सेंटर हकनल रोड पर ऑन वेंसडे 27 मई को शाम 6 बजे से 7:30 बजे तक। हम आपका एक चीक स्वाब लेंगे मुंह के अंदर से और फिर उसे टेस्टिंग के लिए भेज देंगे। हमें उम्मीद है कि आप वेंसडे आकर इस फैमिली की मदद जरूर करेंगे। शुक्रिया।
2: चांद रात की शॉपिंग अब होगी और भी जबरदस्त। कपड़े, ज्वेलरी, मेहंदी, ईद एक्सेसरीज, सब कुछ एक ही जगह। बकरा मुबारक 2026 UK का बिगेस्ट मल्टी कल्चरल ईद फेस्टिवल। अपनी फैमिली के साथ जरूर आए 26th of May 2026 शाम 6 से रात गए तक। एक्सेलसियर नवाब, लोटस रोड, नॉटिंघम, NG5 1EL। फॉर डिटेल्स कॉन्टेक्ट 07715299779 और 07552 538250.
3: Attention property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Training Academy, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring compliance and safety. At Elite Care Training Academy, we specialize in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704 135 or 07541 181 746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.
4: जी नासिर साहब, सुनाइए कैसे हैं आप और कहां तक पहुंची आपकी दुकान की रेनोवेशन?
5: बिल्कुल ठीक हूं यार, लेकिन दुकान की रेनोवेशन तो कंप्लीट हो चुकी है, बट कोई यार ना फिनिशिंग ना कोई क्वालिटी वर्क, बस मजा नहीं आया। अब सोच रहा हूं कि घर को अपग्रेड करना है, रेनोवेशन का काम है, किससे रابطہ किया जाए?
4: आपने मुगल बिल्डर्स का नाम नहीं सुना?
5: मुगल बिल्डर्स?
4: जी हाँ, मुगल बिल्डर्स। चाहे नया किचन हो, मॉडर्न और स्टाइलिश बाथरूम या फिर पूरा मेकओवर, मुगल बिल्डर्स हैं वो एक्सपर्ट्स जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं।
6: जी, मुगल बिल्डर्स किचन फिटिंग और वर्कटॉप से लेकर बाथरूम टाइलिंग, फिटिंग्स और रेनोवेशंस, पेंटिंग और डेकोरेटिव फिनिशेस, लेमिनेशन, विनाइल और वुडन फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, ड्राई लाइनिंग और जो भी काम बिल्डिंग से रिलेटेड हो, करते हैं ना मुगल बिल्डर्स।
4: मुगल बिल्डर्स स्टार्ट से फिनिश तक सब कुछ करते हैं।
6: मुगल बिल्डर्स, साफ सुथरा काम, बेहतरीन फिनिशिंग और मुनासिब दाम। तो अभी कॉल करें 07440363063 या 07421077999 पर फ्री कंसल्टेशन एंड कोट।
4: मुगल बिल्डर्स, जगह बदले, भरोसा तामीर करें।
7: यू आर लिसनिंग इस्लामिक ट्रांसमिशन ऑन फजा 97.1 FM एंड ऐप।
4: आप सुन रहे हैं इस्लामी नशरियात फजा 97.1 FM और डैब पर।
7: यू आर लिसनिंग इस्लामिक ट्रांसमिशन ऑन फजा 97.1 FM एंड ऐप।
4: आप सुन रहे हैं इस्लामी नशरियात फजा 97.1 FM और डैब पर।
8: फैनमा म्यूजिक।

0: You are listening Islamic Transmission on Faza 97.1 FM and DAB.
1: आप सुन रहे हैं इस्लामी नशरियात फजा 97.1 FM.

न मलकुना तुल के न कोई और लिखार, ये कागज कच्चे चमड़े का वो पाक परवरदिगार। तू गुमान करता है अपनी तदबीर पर बंदे, मगर चलती वही है जो चाहता है।

0: होता है जो मॉल।
1: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
2: जी हाँ, मराया रेस्टोरेंट में मिडल ईस्ट के असली जायके के साथ अपना दिन शुरू करें। सुबह का आगाज ऑथेंटिक अरेबिक ब्रेकफास्ट के साथ, फ्रेश बेक्ड ज़ातर ब्रेड जो पिघले हुए चीज के साथ और भी लजीज हो जाए, गर्मा गर्म रोटी सीधी ओवन से, क्रीमी हुमस और ताजा तैयार की हुई फलाफिल जो हर बाइट में फ्लेवर से हो भरपूर। और जब आप कुछ वाकई ही यादगार खाना चाहते हो तो जरूर ट्राई करें मराया रेस्टोरेंट की स्पेशल सिग्नेचर डिश लेजेंडरी स्पेशल मंदी, स्पेशली कुक्ड फॉर अनबीटेबल टेस्ट, खुशबूदार और रिवायती मसालों से भरपूर। चाहे ब्रेकफास्ट हो, ब्रंच, लंच, डिनर या टेक अवे, मराया रेस्टोरेंट हर दफा लाजवाब जायके और बेमिसाल सर्विस के साथ। रोजाना टाइमिंग सुबह 9:30 से रात 10:30 तक। विजिट करें 136-138 अल्फ्रेड डेंटन रोड नॉटिंघम या अभी राब्ता करें 0759315069। मराया रेस्टोरेंट, जहां हर मील बन जाता है एक यादगार लम्हा।
3: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
4: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
3: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
4: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
3: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
4: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
3: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा
5: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
2: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रابطہ करें 0115-929-8484 या 0770210793।
6: Ariana Supermarket, 126132 Grassington Road, NG8 3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
7: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasa, Students Learning and Skills Academy.
8: ख्वाबों जैसी शादी का ख्वाब अब हकीकत में बदलने वाला है। आपकी खुशियों के हसीन लम्हे यादगार बनाने के लिए हयात वेडिंग डिकोर हाजिर है। जदीद तरीन थीम्स, शानदार सेटअप, संगीत, मेहंदी, वेडिंग रिसेप्शन, होम एंड वेन्यू, निकाह पार्टीशन, सेंटर पीसेस, वेलकम साइन, एंगेजमेंट, हाउस लाइटनिंग, वॉक अवे, डांस फ्लोर और आपकी पसंद के मुताबिक सजावट, वो भी आपके बजट में। तो देर किस बात की, अभी राब्ता करें हयात वेडिंग डेकोर से और अपनी शादी को बनाएं एक शानदार याद। मजीद मालूमात के लिए कॉल करें 07715-299-779 और विजिट अस एट
9: hayatweddings.co.uk।
10: आप सुन रहे हैं इस्लामी नशरियात फजा 97.1 FM और डैब पर।

0: आप सुन रहे हैं इस्लामी नशरियात फजा 97.1 एफएम और डैब पर।
1: यू आर लिसनिंग इस्लामिक ट्रांसमिशन ऑन फजा 97.1 एफएम एंड डैब। यू आर लिसनिंग इस्लामिक ट्रांसमिशन ऑन फजा 97.1 एफएम एंड डैब। यू आर लिसनिंग इस्लामिक ट्रांसमिशन ऑन फजा 97.1 एफएम एंड डैब।
0: आप सुन रहे हैं इस्लामी नशरियात फजा 97.1 एफएम और डैब पर।
1: You are listening Islamic transmission on Faza 97.1 FM and DAB.
0: आप सुन रहे हैं इस्लामी नशरियात फजा 97.1 FM और DAB पर।
1: You are listening Islamic transmission on Faza 97.1 FM and DAB.
0: आप सुन रहे हैं इस्लामी नशरियात फजा 97.1 FM और DAB पर।
1: You are listening Islamic transmission on Faza 97.1 FM and DAB.
0: आप सुन रहे हैं इस्लामी नशरियात फजा 97.1 एफएम और डैब पर।
1: यू आर लिसनिंग इस्लामिक ट्रांसमिशन ऑन फजा 97.1 एफएम एंड डैब। यू आर लिसनिंग इस्लामिक ट्रांसमिशन ऑन फजा 97.1 एफएम एंड डैब। यू आर लिसनिंग इस्लामिक ट्रांसमिशन ऑन फजा 97.1 एफएम एंड डैब।
0: आप सुन रहे हैं इस्लामी नशरियात फजा 97.1 एफएम और डैब पर।
1: You are listening Islamic transmission on Faza 97.1 FM and DAB.
0: आप सुन रहे हैं इस्लामी नशरियात फजा 97.1 FM और DAB पर।

0: You are listening Islamic Transmission on Faza 97.1 FM and DAB.
1: आप सुन रहे हैं इस्लामी नशरियात फजा 97.1 FM और DAB पर.
0: You are listening Islamic Transmission on Faza 97.1 FM and DAB.
1: आप सुन रहे हैं इस्लामी नशरियात फजा 97.1 FM और DAB पर.
0: You are listening Islamic Transmission on Faza 97.1 FM and DAB. You are listening Islamic Transmission on Faza 97.1 FM and DAB.

0: You are listening Islamic Transmission on Faza 97.1 FM and DAB.
1: आप सुन रहे हैं इस्लामी नशरियात फजा 97.1 FM और DAB पर.
0: You are listening Islamic Transmission on Faza 97.1 FM and DAB.
1: आप सुन रहे हैं इस्लामी नशरियात फजा 97.1 FM और DAB पर.
0: You are listening Islamic Transmission on Faza 97.1 FM and DAB.
1: आप सुन रहे हैं इस्लामी नशरियात फजा 97.1 FM और DAB पर.
0: You are listening Islamic Transmission on Faza 97.1 FM.

0: You are listening Islamic Transmission on Faza 97.1 FM and DAB. You are listening Islamic Transmission on Faza 97.1 FM and DAB.
1: आप सुन रहे हैं इस्लामी नशरियात फजा 97.1 FM और DAB पर.
0: You are listening Islamic Transmission on Faza 97.1 FM and DAB.
1: आप सुन रहे हैं इस्लामी नशरियात फजा 97.1 FM और DAB पर.
0: You are listening Islamic Transmission on Faza 97.1 FM and

डरता है तूफानों से, ये तो तेरी उड़ान का इम्तिहान है। सिर्फ सांसें चलने का नाम जिंदगी नहीं, गिरते हुए संभलने का नाम जिंदगी है। बिखरता है वही।

0: है तू। ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: हेलो मान, कहाँ हो यार?
2: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
1: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
2: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
1: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या है यार? सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडिल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
2: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
1: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्रे पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गए की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्रे पिज्जा।
3: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी राब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
4: Ariana Supermarket, 126132, Grassington Road, NG8-3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
5: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
6: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
5: अरे जाने दें, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
6: आय हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
5: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है। और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
6: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
7: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG2 4HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG7 6LW.
5: Park Foods, जो नाम है मायार का।
8: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 Plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasa, Students Learning and Skills Academy.
9: रोज रोज सेम रूटीन से बोर हो गए हैं,
10: तो अब वक्त है अपना मूड चेंज करने का।
9: वेलकम टू मूड रेस्टोरेंट, जहां हर बाइट के साथ मिलता है परफेक्ट टेस्ट और परफेक्ट वाइब्स।
10: चाहे हो फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट, फैमिली डिनर या मी टाइम, मूड रेस्टोरेंट है हर ओकेजन के लिए परफेक्ट।
9: Delicious premium steak, juicy burgers, creamy pastas और fresh drinks, सब कुछ एक ही जगह।
10: क्योंकि जब खाना हो जबरदस्त तो मूड खुद ही बन जाता है।
9: तो आज ही विजिट करें मूड रेस्टोरेंट, moodnottingham.com, 948 Woodsboro Road, Nottingham, NG3 5QS।
10: हर दिन को बनाए स्पेशल मूड रेस्टोरेंट,
9: टेस्ट भी वाइब भी।
11: You are listening Islamic Transmission on Faza 97.1 FM and app.
10: आप सुन रहे हैं इस्लामी नशरियात फजा 97.1 FM और डैब पर।
11: You are listening Islamic Transmission on Faza 97.1 FM and app.
10: आप सुन रहे हैं इस्लामी नशरियात फजा 97.1 FM और डैब पर।
11: You are listening Islamic Transmission on Faza 97.1 FM and app.
10: आप सुन रहे हैं इस्लामी नशरियात फजा 97.1 FM और डैब पर।
11: यू आर लिसनिंग इस्लामिक ट्रांसमिशन ऑन फजा 97.1 FM एंड डैब।
12: ये कैसा सफर है, ये कैसी जुस्तजू, जमीन पे चलते हैं, आ आसमान को देखते हैं, हो या मौला हक इलाही।

0: आप सुन रहे हैं इस्लामी नशरियात फजा 97.1 FM और डैब पर।
1: यू आर लिसनिंग इस्लामिक ट्रांसमिशन ऑन फजा 97.1 FM एंड डैब। यू आर लिसनिंग इस्लामिक ट्रांसमिशन ऑन फजा 97.1 FM एंड डैब। यू आर लिसनिंग इस्लामिक ट्रांसमिशन ऑन फजा 97.1 FM एंड डैब।

0: न मिलकुना तू लिखे न कोई और लिखार, ये कागज कच्चे चमड़े का वो पाक परवरदिगार। तू गुमान करता है अपनी तदबीर पर बंदे, मगर आ मगर चलती वही है जो चाहता है किरदार।
1: Venom Music.

0: आप सुन रहे हैं इस्लामी नशरियात फजा 97.1 FM और डैब पर।
1: यू आर लिसनिंग इस्लामिक ट्रांसमिशन ऑन फजा 97.1 FM एंड डैब।
0: आप सुन रहे हैं इस्लामी नशरियात फजा 97.1 FM और डैब पर।

कमान से निकला तीर और जबान से निकली बात, कमान से निकला तीर और जबान से निकली बात वापिस नहीं आती।

ये शान और शौकत, ये तख्त और ताज सब धरा रह जाएगा जब मौत का फरिश्ता तुझे लेने आएगा। न कोई साथी

0: You are listening Islamic Transmission on Faza 97.1 FM and DAB.
1: आप सुन रहे हैं इस्लामी नशरियात फजा 97.1 FM और DAB पर.
0: You are listening Islamic Transmission on Faza 97.1 FM and DAB.

0: You are listening Islamic Transmission on Faza 97.1 FM and DAB. You are listening Islamic Transmission on Faza 97.1 FM and DAB.
1: आप सुन रहे हैं इस्लामी नशरियात फजा 97.1 FM और DAB पर.
0: You are listening Islamic Transmission on Faza 97.1 FM and DAB.
1: आप सुन रहे हैं इस्लामी नशरियात फजा 97.1 FM और DAB पर.
0: You are listening Islamic Transmission on Faza 97.1 FM and DAB.
1: आप सुन रहे हैं इस्लामी नशरियात फजा 97.1 FM और DAB पर.
0: You are listening Islamic Transmission on Faza 97.1 FM and DAB.

मौला जाने लकीर क्या है, फकीर क्या है, मौला जाने।

0: आप सुन रहे हैं इस्लामी नशरियात फजा 97.1 FM और डैब पर।
1: यू आर लिसनिंग इस्लामिक ट्रांसमिशन ऑन फजा 97.1 FM एंड डैब। यू आर लिसनिंग इस्लामिक ट्रांसमिशन ऑन फजा 97.1 FM एंड डैब। यू आर लिसनिंग इस्लामिक ट्रांसमिशन ऑन फजा 97.1 FM एंड डैब।
0: आप सुन रहे हैं इस्लामी नशरियात फजा 97.1 FM और डैब पर।
1: You are listening Islamic transmission on Faza 97.1 FM.

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: यूके की सबसे बड़ी चांद रात मल्टीकल्चरल ईद फेस्टिवल आ रही है एक ग्रैंड अंदाज में। सेलिब्रेट करें ईद उल अधा फैमिली, फूड, शॉपिंग और जबरदस्त एंटरटेनमेंट के साथ। लाइव कवाली परफॉर्मेंस पाए उस्ताद रफाकत अली खान 26 मई 2026 शाम 6 बजे से लेट नाइट तक। बकरा मुबारक 2026 ब्रिंगिंग ट्रेडिशन टू लाइफ। डिटेल्स या बुकिंग के लिए अभी कॉल करें 07715299779 या 07552538250। बकरा मुबारक चांद रात मल्टीकल्चरल ईद फेस्टिवल 2026।
2: Attention, property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Fire Safety Solutions, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring you stay compliant with the Regulatory Reform Order 2005 by providing you with a professional risk assessment service. At Elite Care Fire Safety Solutions, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Fire Safety Solutions today at 077 30 791 412, or visit our website www.ecfss.com to secure a no obligation quote today.
3: राहिला बहन, बहुत बहुत मुबारक हो। आपके बच्चों ने GCSE और SATs एग्जाम्स बड़े अच्छे नंबरों से पास किए।
4: भाई मुबारक तो हो सलासा ट्यूशन सेंटर वालों को, जिनकी मेहनत से बच्चों ने GCSE मैथ्स, इंग्लिश और साइंस में ए स्टार्स और SATs में ग्रेटर डेप्थ हासिल किए हैं।
3: सलासा ट्यूशन सेंटर?
4: जी हाँ, इनकी एक ब्रांच न्यू बेस्फोर्ड NG7 7FY और दूसरी ब्रांच स्नेंटनडेल NG2 4LG में है।
3: लेकिन मैं तो यूनिवर्सल क्रेडिट पे हूँ और फुल ट्यूशन फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकता।
4: मसला ही कोई नहीं, सलासा ट्यूशन सेंटर नॉटिंघम ऑफ स्टेट रजिस्टर्ड है और यूनिवर्सल क्रेडिट वालों के लिए 85% डिस्काउंट अवेलेबल है।
3: फिर तो मैं आज ही उनसे रापता करता हूँ।
5: जी हाँ, आज ही रापता कीजिए सलासा ट्यूशन सेंटर 07968046444 या 01159168231। कुछ बन गए आज तो कल काम आएगा।
6: Planning to upgrade your home or business space? Whether it's a brand new kitchen, a stylish bathroom, or a complete makeover, Mogul Builders are the experts you can rely on. From kitchen fitting and worktops, bathroom tiling, fitting and renovations, painting and decorative finishes, laminate, vinyl, and wooden flooring, to plastering, dry lining, and minor building work. Mogul Builders handle it all, from start to finish. Clean work, quality finish, fair prices. Call 07440-363063 or 07421-077999 for a free consultation and quote. Mogul Builders, transforming spaces, building trust.
7: आप सुन रहे हैं फजा 97.1 FM।
1: आप सुन रहे हैं इस्लामी नशरियात फजा 97.1 FM और डैब पर।
8: यू आर लिसनिंग इस्लामिक ट्रांसमिशन ऑन फजा 97.1 FM एंड डैब।
1: आप सुन रहे हैं इस्लामी नशरियात फजा 97.1 FM और डैब पर।
8: यू आर लिसनिंग इस्लामिक ट्रांसमिशन ऑन फजा 97.1 FM एंड डैब।
1: आप सुन रहे हैं इस्लामी नशरियात फजा 97.1 FM और डैब पर।

0: आप सुन रहे हैं इस्लामी नशरियात फजा 97.1 FM और डैब पर।
1: यू आर लिसनिंग इस्लामिक ट्रांसमिशन ऑन फजा 97.1 FM एंड डैब।
0: आप सुन रहे हैं इस्लामी नशरियात फजा 97.1 FM और डैब पर।
1: यू आर लिसनिंग इस्लामिक ट्रांसमिशन ऑन फजा 97.1 FM एंड डैब।
0: आप सुन रहे हैं इस्लामी नशरियात फजा 97.1 FM और डैब पर।

कमान से निकला तीर और जबान से निकली बात, कमान से निकला तीर और जबान से निकली बात वापिस नहीं आती।

0: It's commercial time.
1: रूह को महका देने वाली एक यादगार शाम, लाइव कव्वाली परफॉर्मेंस, गेस्ट ऑफ ऑनर उस्ताद रफाकत अली खान एंड हमनवा ऑन स्पेशल इवेंट बकरा मुबारक 2026। इश्को सुरूर की महफिल कव्वाली नाइट 26 मई 2026 शाम 6 बजे से रात गए तक। तशरीफ लाना मत भूलिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। Excelsior Nawab, Lotus Road, Nottingham, NG5 1EL. For details, please contact 07715299779 or 07552538250. UK's biggest multicultural Eid festival, Bakra Mubarak 2026.
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या है यार? सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताज़ा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताज़ा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गए की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
4: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
2: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी राब्ता करें 01159298484 या 07021079032।
5: अरियाना सुपरमार्केट, 126132 ग्रैसिंगटन रोड, NG8 3P, नॉटिंघम, मंडे टू सैटरडे 8 AM to 8 PM, संडे 10 AM to 8 PM। अरियाना सुपरमार्केट, फ्रेशनेस यू कैन ट्रस्ट, प्राइसेस यू लव।
6: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
7: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
6: अरे जाने दें, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
7: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
6: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है। और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
7: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
8: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG2 4HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG7 6LW।
6: Park Foods, जो नाम है मायार का।
9: Discover the authentic taste of the Middle East at Mariah Restaurant in Tooting with a breakfast experience full of rich Arabic flavors. Enjoy freshly baked manish straight from the oven, topped with delicious melted cheese, warm traditional breads, creamy hummus and crispy fresh falafel prepared daily.
10: And when you're ready for something truly unforgettable, treat yourself to Mariah's signature dish, the legendary Especial Mandi, slow-cooked, aromatic and rich with traditional spices.
9: From breakfast and brunch to lunch, dinner and takeaway, Mariah Restaurant brings quality food and excellent service together under one roof. Open daily from 9:30 a.m. till 10:30 p.m.
10: Visit us at 136-138 Alfreton Road, Nottingham.
9: Or place your order today on 0759-315-0669. Mariah Restaurant.
11: You are listening 97.1 FM.

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: ओए खुशियाँ मनाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ।
2: आज तो बहुत खुश लग रहे हैं, खैर तो है।
1: मेरी बीवी का वीजा हो गया जी।
2: ओहो मुबारकबाद, बहुत जल्दी आ गया।
1: सारी नसीब दी गल है, मैं लोकल वीजा मायरीन दी मदद लई सी जी।
2: उनका नाम ही बता दें, हमें भी कभी जरूरत पड़ सकती है।
1: AMH सॉलिसिटर्स। और कौन? ओ वधिया ने, दोस्ताना माहौल, तेज ते जल्दी कम कर दे रहे। सोने ते स्वागा ये कि हर तरह का वीजा एक्सटेंशंस, इनडेफिनेट लीव टू रिमेन और सिटीजनशिप एप्लीकेशंस भी कर देने।
2: चले उनका पता भी बता दें, आपको तो जुबानी याद होगा।
1: हाँ जी क्यों नहीं, नॉटिंगम रोड, न्यू बेसफोर्ड, नॉटिंगम।
2: जबरदस्त, मैं उनसे राबता करूंगी अपनी फैमिली के वीजा के लिए। नंबर क्या है?
1: लो जी ओ भी जुबानी याद है, 0115-671-3677। प्योर जिम दी बिल्डिंग विच ने, मुफ्ता मशवरा लो जी।
3: AMH Solicitors, Immigration Lawyers at Sovereign House, 184 Nottingham Road, New Basford, Nottingham, NG7 7BA. Large free car park available, or call them on 0115-671-3677.

0: ईद उल अधा की खुशियों को ग्रैंड स्टाइल में सेलिब्रेट करें। ZK इवेंट्स और रेडियो फजा ला रहा है इस चांद रात को जबरदस्त इवेंट बकरा मुबारक 2026, एक यादगार चांद रात एक्सपीरियंस। 26th of May, 6 PM till late. सिर्फ शॉपिंग नहीं, पूरी फैमिली के लिए एंटरटेनमेंट का धमाका। फूड स्टॉल्स, फैमिली फन, ईद वाइब्स और नॉन स्टॉप एक्साइटमेंट। तो इस चांद रात मिलते हैं बकरा मुबारक 2026 में, एक्सेलसियर नवाब, लोटस रोड, नोटिगम, NG5 1EL।
1: बड़ी ईद की बड़ी खुशियों में आपके साथ साथ मराया रेस्टोरेंट। मराया रेस्टोरेंट की जानिब से तमाम अहले नॉटिंगम को बड़ी ईद की बड़ी खुशियां बहुत बहुत मुबारक। तकबलुल्लाह मिन्ना व मिनकुम।
2: प्लानिंग अ वेडिंग, रिसेप्शन और स्पेशल सेलिब्रेशन? डिस्कवर एक्सेलसियर नवाब, नॉटिंगहम्स ब्रांड न्यू रेनोवेटेड बैंक्वेटिंग वेन्यू। A beautifully designed indoor marquee concept featuring sparkling traditional chandeliers, stunning LED lighting throughout, and elegant decor.
3: Enjoy venue hire, tables and chairs with table linen, chair covers, centerpieces, stage and walkway decor, a delicious three-course meal, drinks, professional waiter service, and a dedicated supervisor on the day.
2: Fully air-conditioned, with modern kitchen facilities, a spacious foyer reception area located just 1 mile from Nottingham City Centre at 5-7 Lourdes Road, NG51EL.
3: Excelsior Nawab, where your special moments become unforgettable.
4: Zabardast hits.
5: Music never sounded better.
6: Fazan 97.1 FM.
5: I love it.

0: It's commercial time.
1: हेलो नॉटिंघम, हम एक डेडिकेटेड लोकल डॉक्टर और यंग फादर के लिए एक अर्जेंट स्टेम सेल डोनेशन की अपील कर रहे हैं जो इस समय अपनी जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। उन्हें अर्जेंटली एक लाइफ सेविंग स्टेम सेल ट्रांसप्लांट की जरूरत है, लेकिन अफसोस अभी तक उनका साउथ एशियन मैच कहीं नहीं मिला है। हम पूरी साउथ एशियन कम्युनिटी से गुजारिश करते हैं कि प्लीज आगे आए और इस फादर की मदद करें। हम एक डोनर ड्राइव होस्ट कर रहे हैं ICCA सेंटर हकनल रोड पर ऑन वेंसडे 27 मई को शाम 6 बजे से 7:30 बजे तक। हम आपका एक चीक स्वाब लेंगे मुंह के अंदर से और फिर उसे टेस्टिंग के लिए भेज देंगे। हमें उम्मीद है कि आप वेंसडे आकर इस फैमिली की मदद जरूर करेंगे। शुक्रिया।
2: चांद रात की शॉपिंग अब होगी और भी जबरदस्त। कपड़े, ज्वेलरी, मेहंदी, ईद एक्सेसरीज, सब कुछ एक ही जगह। बकरा मुबारक 2026 UK का बिगेस्ट मल्टी कल्चरल ईद फेस्टिवल। अपनी फैमिली के साथ जरूर आए 26th of May 2026 शाम 6 से रात गए तक। एक्सेलसियर नवाब, लोटस रोड, नॉटिंघम, NG5 1EL। फॉर डिटेल्स कॉन्टेक्ट 07715299779 और 07552 538250.
3: Attention property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Training Academy, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring compliance and safety. At Elite Care Training Academy, we specialize in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704 135 or 07541 181 746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.
4: जी नासिर साहब, सुनाइए कैसे हैं आप और कहां तक पहुंची आपकी दुकान की रेनोवेशन?
5: बिल्कुल ठीक हूं यार, लेकिन दुकान की रेनोवेशन तो कंप्लीट हो चुकी है बट कोई यार ना फिनिशिंग ना कोई क्वालिटी वर्क, बस मजा नहीं आया। अब सोच रहा हूं कि घर को अपग्रेड करना है, रेनोवेशन का काम है, किससे रابطہ किया जाए?
4: आपने मुगल बिल्डर्स का नाम नहीं सुना?
5: मुगल बिल्डर्स?
4: जी हाँ, मुगल बिल्डर्स। चाहे नया किचन हो, मॉडर्न और स्टाइलिश बाथरूम या फिर पूरा मेकओवर, मुगल बिल्डर्स हैं वो एक्सपर्ट्स जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं।
6: जी, मुगल बिल्डर्स किचन फिटिंग और वर्कटॉप से लेकर बाथरूम टाइलिंग, फिटिंग्स और रेनोवेशंस, पेंटिंग और डेकोरेटिव फिनिशेस, लैमिनेशन, विनाइल और वुडन फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, ड्राई लाइनिंग और जो भी काम बिल्डिंग से रिलेटेड हो करते हैं ना मुगल बिल्डर्स।
4: मुगल बिल्डर्स स्टार्ट से फिनिश तक सब कुछ करते हैं।
6: मुगल बिल्डर्स, साफ सुथरा काम, बेहतरीन फिनिशिंग और मुनासिब दाम। तो अभी कॉल करें 07440363063 या 07421077999 पर फ्री कंसल्टेशन एंड कोट।
4: मुगल बिल्डर्स, जगह बदले भरोसा तामीर करे।
7: जबरदस्त हिट्स,
8: म्यूजिक नेवर साउंडेड बेटर।
9: यू आर लिस्टिंग 97.1 FM।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: जी हाँ, मराया रेस्टोरेंट में मिडल ईस्ट के असली जायके के साथ अपना दिन शुरू करें। सुबह का आगाज ऑथेंटिक अरेबिक ब्रेकफास्ट के साथ, फ्रेश बेक्ड ज़ातर ब्रेड जो पिघले हुए चीज के साथ और भी लजीज हो जाए, गर्मा गर्म रोटी सीधी ओवन से, क्रीमी हुमस और ताजा तैयार की हुई फलाफिल जो हर बाइट में फ्लेवर से हो भरपूर। और जब आप कुछ वाकई ही यादगार खाना चाहते हो तो जरूर ट्राई करें मराया रेस्टोरेंट की स्पेशल सिग्नेचर डिश लेजेंडरी स्पेशल मंदी, स्पेशली कुक्ड फॉर अनबीटेबल टेस्ट, खुशबूदार और रिवायती मसालों से भरपूर। चाहे ब्रेकफास्ट हो, ब्रंच, लंच, डिनर या टेक अवे, मराया रेस्टोरेंट हर दफा लाजवाब जायके और बेमिसाल सर्विस के साथ। रोजाना टाइमिंग सुबह 9:30 से रात 10:30 तक। विजिट करें 136-138 अल्फर्ड डेंटन रोड नॉटिंघम या अभी राब्ता करें 07593150669। मराया रेस्टोरेंट, जहां हर मील बन जाता है एक यादगार लम्हा।
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या है यार? सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्रे पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स हरियाणा के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गए की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
4: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
2: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी राब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
5: अरियाना सुपरमार्केट, 126-132 ग्रैसिंगटन रोड, NG8-3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
6: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159-168-231 or 07968-046-444. Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7-7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasser, Students Learning and Skills Academy.
7: ख्वाबों जैसी शादी का ख्वाब अब हकीकत में बदलने वाला है। आपकी खुशियों के हसीन लम्हे यादगार बनाने के लिए हयात वेडिंग डिकोर हाजिर है। जदीद तरीन थीम्स, शानदार सेटअप, संगीत, मेहंदी, वेडिंग रिसेप्शन, होम एंड वेन्यू, निकाह पार्टीशन, सेंटर पीसेस, वेलकम साइन, एंगेजमेंट, हाउस लाइटिंग, वॉक अवे, डांस फ्लोर और आपकी पसंद के मुताबिक सजावट, वो भी आपके बजट में। तो देर किस बात की, अभी राब्ता करें हयात वेडिंग डेकोर से और अपनी शादी को बनाएं एक शानदार याद। मजीद मालूमात के लिए कॉल करें 0771522।
8: You are listening 97.1 FM.

बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। फजा 97.1 एफएम नॉटिंघम के लाइव स्टूडियो से मैं हूं आपके साथ, आपका मेजबान, आपका होस्ट एंड आपका दोस्त उस्मान खान। वेलकम, खुश आमदीद जी, एन उसद बिस्मिल्लाह पर खैर रगले अस्तलावेस्ता। उम्मीदवार से जनाब जो जहां जिस हाल में होगा खुशबाश होगा और अपनी जिंदगी को बेहतर से बेहतरीन बनाने की तगदों में मशगूल होगा, बल्कि उम्मीद ही नहीं यकीन के साथ कहते हैं कि आप जहां कहीं होंगे खुशबाश होंगे और अपनी जिंदगी को बेहतर से बेहतरीन बनाने की कोशिश में लगे होंगे और होना भी चाहिए। देखिए जी, चार दिन की जिंदगी है, तीन दिन गुजर गए, एक दिन रह गए, इसको भरपूर तरीके से जी लें। और इसको जीने का बेहतरीन तरीका ये है कि इसको इसकी मर्जी पर छोड़ दीजिए, मतलब इंजॉय कर लें, चिल मस्ती कर लें। ये क्या आपने, अब वो क्या एक पंजाबी का शेर मेरे जहन में आ रहा है कि ऐथे रख मोडे ते सिर, ऐसी थी तैसी तेरी उदासियां थी। तो बस कुछ ऐसी सूरत हाल है, ये उदासियां और ये लापरवाहियां, ये बेचैनियां, ये वगैरह वगैरह जो भी होता है, ये तमाम तर चीज़ें इनको रखिए साइड पे और अपनी ज़िंदगी को ज़रा चिल मस्ती की तरफ लेकर आइए। क्योंकि सियाने लोग कहा करते हैं कि इसने गुजर जाना है, तो अगर इसने गुजर ही जाना है तो क्यों इसे बेहतरीन तरीके से गुजारा जाए। हाँ, ये हकीकत है कि ज़िंदगी जीने और गुजारने में बड़ा फ़र्क होता है। आजकल माशरा जिस तरह चल रहा है, जो हम सब के मामलात चल रहे हैं, ना सिर्फ मेरे आपके, तमाम तर लोगों के, इन मामलात में हम लोग सिर्फ ज़िंदगी को गुजार रहे हैं, जी नहीं रहे। हमें अपनी ज़िंदगी को जीना चाहिए, क्योंकि इसने गुजर तो वैसे खुद भी जाना ही है, तो जब इसने गुजर ही जाना है तो इसको भरपूर तरीके से जी लिया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। अब ज़रा अपने आसपास ऊपर नीचे आगे पीछे नज़र घुमाइए और बताइए मुझे, ज़रा सोच समझ कर के अब तक की ज़िंदगी में कौन सी ऐसी मिस्टेक कर बैठे हैं जिसकी वजह से आपको लगता है कि आपकी ज़िंदगी कुछ अच्छी और कुछ ख़ास नहीं गुजर रही। कोई एक आध तो ऐसी गलती आपको ज़रूर नज़र में आएगी आपके, जिससे आपको पता चल सकेगा कि आपकी ज़िंदगी में जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो क्यों हैं। और जिस दिन आपको आपकी गलती का पता चल गया, यकीन करेंगे उस दिन आप उसको सही करने की तरफ ज़रूर जाएंगे, और जिस दिन वो ठीक हो गई उस दिन जाके सारे मामला हल हो जाएंगे। तो इसलिए परेशान बिल्कुल नहीं होना, खुशबाश रहना है और अपनी उन गलतियों को तलाश करते रहना है जिन गलतियों की वजह से आपकी ज़िंदगी जो है वो सही नहीं गुजर रही। प्रोग्राम में शामिल करेंगे खूबसूरत सा मैशअप, इस मैशअप के उस पार होगी आपसे मुलाकात। डोंट गो एनीवेयर, रहिएगा मेरे साथ साथ। आई एम योर होस्ट उस्मान खान एंड यू आर लिसनिंग फजा 97.1 एफएम and dabs.

0: किया। ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
2: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
1: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
2: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
1: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपर मार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
2: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
1: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपर मार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ, और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गए की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
3: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
4: Ariana Supermarket, 126132, Grassington Road, NG8 3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
5: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
6: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
5: अरे जाने दें, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
6: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
5: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है। और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
6: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
7: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG2 4HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG7 6LW.
5: Park Foods, जो नाम है मायार का।
8: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11+, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasser, Students Learning and Skills Academy.
9: रोज रोज सेम रूटीन से बोर हो गए हैं,
10: तो अब वक्त है अपना मूड चेंज करने का।
9: वेलकम टू मूड रेस्टोरेंट, जहां हर बाइट के साथ मिलता है परफेक्ट टेस्ट और परफेक्ट वाइब्स।
10: चाहे हो फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट, फैमिली डिनर या मी टाइम, मूड रेस्टोरेंट है हर ओकेजन के लिए परफेक्ट।
9: Delicious premium steak, juicy burgers, creamy pastas और fresh drinks, सब कुछ एक ही जगह।
10: क्योंकि जब खाना हो जबरदस्त तो मूड खुद ही बन जाता है।
9: तो आज ही विजिट करें मूड रेस्टोरेंट, moodnottingham.com, 948 Woodsboro Road, Nottingham, NG3 5QS।
10: हर दिन को बनाएं स्पेशल मूड रेस्टोरेंट,
9: टेस्ट भी, वाइब भी।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: यूके की सबसे बड़ी चांद रात मल्टीकल्चरल ईद फेस्टिवल आ रही है एक ग्रैंड अंदाज में। सेलिब्रेट करें ईद उल अधा फैमिली, फूड, शॉपिंग और जबरदस्त एंटरटेनमेंट के साथ। लाइव कवाली परफॉर्मेंस पाए उस्ताद रफाकत अली खान 26 मई 2026 शाम 6 बजे से लेट नाइट तक। बकरा मुबारक 2026 ब्रिंगिंग ट्रेडिशन टू लाइफ।

0: डिटेल्स या बुकिंग के लिए अभी कॉल करें 07715299779 या 07552538250। बकरा मुबारक, चांदराज मल्टीकल्चरल ईद फेस्टिवल 2026।
1: Attention, property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Fire Safety Solutions, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring you stay compliant with the Regulatory Reform Order 2005 by providing you with a professional risk assessment service. At Elite Care Fire Safety Solutions, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Fire Safety Solutions today at 077 30 791 412, or visit our website www.ecfss.com to secure a no obligation quote today.
2: राहिला बहन, बहुत बहुत मुबारक हो। आपके बच्चों ने GCSE और SATs एग्जाम्स बड़े अच्छे नंबरों से पास किए।
3: भाई मुबारक तो हो सलासा ट्यूशन सेंटर वालों को, जिनकी मेहनत से बच्चों ने GCSE मैथ्स, इंग्लिश और साइंस में ए स्टार्स और सेट्स में ग्रेटर डेप्थ हासिल किए हैं।
2: सलासा ट्यूशन सेंटर?
3: जी हाँ, इनकी एक ब्रांच न्यू बेसफोर्ड NG7 7FY और दूसरी ब्रांच स्नेंटनडेल NG2 4LG में है।
2: लेकिन मैं तो यूनिवर्सल क्रेडिट पे हूँ और फुल ट्यूशन फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकता।
3: मसला ही कोई नहीं, सलासा ट्यूशन सेंटर नॉटिंघम ऑफ स्टेट रजिस्टर्ड है और यूनिवर्सल क्रेडिट वालों के लिए 85% डिस्काउंट अवेलेबल है।
2: फिर तो मैं आज ही उनसे रब्ता करता हूँ।
4: जी हाँ, आज ही रब्ता कीजिए सलासा ट्यूशन सेंटर 07968046444 या 01159168231। कुछ बन गए आज तो कल काम आएगा।
5: Planning to upgrade your home or business space? Whether it's a brand new kitchen, a stylish bathroom, or a complete makeover, Mogul Builders are the experts you can rely on. From kitchen fitting and worktops, bathroom tiling, fitting and renovations, painting and decorative finishes, laminate, vinyl, and wooden flooring, to plastering, dry lining, and minor building work. Mogul Builders handle it all, from start to finish. Clean work, quality finish, fair prices. Call 07440-363063 or 07421-077999 for a free consultation and quote. Mogul Builders, transforming spaces, building trust.
6: आप सुन रहे हैं फजा 97.1 FM।

All right, जनाब, once again, welcome back. लूट कर आ चुके हैं वापस सुमित के साथ कि आप लोग मेरे साथ और मैं आपके साथ था, मगर अभी इजाजत चाहने का वक्त आन पहुंचा है. और ऑफकोर्स डेट जब कभी इजाजत चाहने का वक्त आता है तो एक सैडनेस ही फीलिंग आ जाती है. मैं कोशिश करता हूँ कि जब भी आपसे दूर जाऊँ तो इस उम्मीद के साथ जाऊँ कि दोबारा लौट कर भी वापस जरूर आए. और जब भी कभी कोई आपका प्यार आपसे दूर जाता है तो कभी भी उसे अलविदा कहते हुए सैड ना हुआ करें, बल्कि खुश हुआ करें इस उम्मीद पर कि दोबारा से जब मुलाकात होगी तो मजीद अच्छे तरीके से गपशप और मुलाकात होगी. सो फाइनली अपने मेज़बान उस्मान खान को इजाज़त दीजिएगा इस बात के साथ कि अपने और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा. और मुझे यानी कि उस्मान खान को दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा. जब कभी फुर्सत में दुआ के लिए हाथ उठाएं तो मुझे भी याद कर लीजिएगा. खुश रहिए, आबाद रहिए, हंसते और मुस्कुराते रहिए. अपने साथ साथ उन तमाम तर लोगों का भी ख्याल रखिएगा जो आपका ख्याल रखते हैं. अगले प्रोग्राम तक के लिए उस्मान खान फाइनली साइनिंग आउट. आपका और मेरा सबका अल्लाह निगेबा.

0: 97.1 FM.
1: Turn it up. Radio Faza 97.1 FM.

0: It's commercial time.
1: रूह को महका देने वाली एक यादगार शाम, लाइव कव्वाली परफॉर्मेंस, गेस्ट ऑफ ऑनर उस्ताद रफाकत अली खान एंड हमनवा ऑन स्पेशल इवेंट बकरा मुबारक 2026। इश्को सुरूर की महफिल कव्वाली नाइट 26 मई 2026 शाम 6 बजे से रात गए तक। तशरीफ लाना मत भूलिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। Excelsior Nawab, Lotus Road, Nottingham, NG5 1EL. For details, please contact 07715299779 or 07552538250. UK's biggest multicultural Eid festival, Bakra Mubarak 2026.
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या है यार? सुपर मार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताज़ा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्रे पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपर मार्केट नाउ। ताज़ा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गए की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्रे पिज्जा
4: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
2: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी राब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
5: Ariana Supermarket, 126132, Grassington Road, NG8 3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
6: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
7: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
6: अरे जाने दें, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
7: आय हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
6: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है। और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
7: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
8: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG2 4HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG7 6LW।
6: Park Foods, जो नाम है मायार का।
9: Discover the authentic taste of the Middle East at Mariah Restaurant in Tooting with a breakfast experience full of rich Arabic flavors. Enjoy freshly baked manish straight from the oven, topped with delicious melted cheese, warm traditional breads, creamy hummus and crispy fresh falafel prepared daily.
10: And when you're ready for something truly unforgettable, treat yourself to Mariah's signature dish, the legendary Especial Mandi, slow-cooked, aromatic and rich with traditional spices.
9: From breakfast and brunch to lunch, dinner and takeaway, Mariah Restaurant brings quality food and excellent service together under one roof. Open daily from 9:30 a.m. till 10:30 p.m.
10: Visit us at 136-138 Alfreton Road, Nottingham.
9: Or place your order today on 0759-315-0669. Mariah Restaurant.
11: You are listening 97.1 FM.

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: ओए खुशियाँ मनाओ, भंगड़े पाओ, भंगड़े पाओ, भंगड़े पाओ।
2: आज तो बहुत खुश लग रहे हैं। खैर तो है,
1: मेरी बीवी का वीजा हो गया जी।
2: ओहो मुबारकबाद, बहुत जल्दी आ गया।
1: सारी नसीब दी गल है, मैं लोकल वीजा मायरीन दी मदद लई सी जी।
2: उनका नाम ही बता दें, हमें भी कभी जरूरत पड़ सकती है।
1: AMH सॉलिसिटर्स। होर कौन? ओ वधिया ने, दोस्ताना माहौल, तेज ते जल्दी काम कर दे रहे। सोने ते सुहागा ए क्यों, हर तरह का वीजा एक्सटेंशंस, इनडेफिनेट लीव टू रिमेन और सिटीजनशिप एप्लीकेशंस भी कर दे ने।
2: चलें उनका पता भी बता दें, आपको तो जुबानी याद होगा।
1: हाँ जी क्यों नहीं, नॉटिंगम रोड, न्यू बेसफोर्ड, नॉटिंगम।
2: जबरदस्त, मैं उनसे राबता करूंगी अपनी फैमिली के वीजा के लिए। नंबर क्या है?
1: लो जी ओ भी जुबानी याद है, 01156713677। प्योर जिम दी बिल्डिंग विच ने, मुफ्त मशवरा लो जी।

0: ईद उल अधा की खुशियों को ग्रैंड स्टाइल में सेलिब्रेट करें। ZK इवेंट्स और रेडियो फजा ला रहा है इस चांद रात को जबरदस्त इवेंट बकरा मुबारक 2026, एक यादगार चांद रात एक्सपीरियंस। 26th of May, 6 PM till late. सिर्फ शॉपिंग नहीं, पूरी फैमिली के लिए एंटरटेनमेंट का धमाका। फूड स्टॉल्स, फैमिली फन, ईद वाइब्स और नॉन स्टॉप एक्साइटमेंट। तो इस चांद रात मिलते हैं बकरा मुबारक 2026 में, एक्सेलसियर नवाब, लोटस रोड, नोटिगम, NG5 1EL।
1: बड़ी ईद की बड़ी खुशियों में आपके साथ साथ मराया रेस्टोरेंट। मराया रेस्टोरेंट की जानिब से तमाम अहले नॉटिंगम को बड़ी ईद की बड़ी खुशियां बहुत बहुत मुबारक। तकबलुल्लाहि मिन्ना व मिनकुम।
2: प्लानिंग अ वेडिंग, रिसेप्शन और स्पेशल सेलिब्रेशन? डिस्कवर एक्सेलसियर नवाब, नॉटिंगहम्स ब्रांड न्यू रेनोवेटेड बैंक्वेटिंग वेन्यू। A beautifully designed indoor marquee concept featuring sparkling traditional chandeliers, stunning LED lighting throughout, and elegant decor.
3: Enjoy venue hire, tables and chairs with table linen, chair covers, centerpieces, stage and walkway decor, a delicious three-course meal, drinks, professional waiter service, and a dedicated supervisor on the day.
2: Fully air-conditioned with modern kitchen facilities. A spacious foyer reception area located just 1 mile from Nottingham City Center at 5-7 Lourdes Road, NG51EL.
3: Excelsior Nawab, where your special moments become unforgettable.
4: Zabardast hits.
5: Music never sounded better.
6: Fazan 97.1 FM.
5: I love it.

0: it's commercial time.
1: हेलो नॉटिंघम, हम एक डेडिकेटेड लोकल डॉक्टर और यंग फादर के लिए एक अर्जेंट स्टेम सेल डोनेशन की अपील कर रहे हैं जो इस समय अपनी जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। उन्हें अर्जेंटली एक लाइफ सेविंग स्टेम सेल ट्रांसप्लांट की जरूरत है, लेकिन अफसोस अभी तक उनका साउथ एशियन मैच कहीं नहीं मिला है। हम पूरी साउथ एशियन कम्युनिटी से गुजारिश करते हैं कि प्लीज आगे आए और इस फादर की मदद करें। हम एक डोनर ड्राइव होस्ट कर रहे हैं ICCA सेंटर हकनल रोड पर ऑन वेंसडे 27 मई को शाम 6 बजे से 7:30 बजे तक। हम आपका एक चीक स्वाब लेंगे मुंह के अंदर से और फिर उसे टेस्टिंग के लिए भेज देंगे। हमें उम्मीद है कि आप वेंसडे आकर इस फैमिली की मदद जरूर करेंगे। शुक्रिया।
2: चांद रात की शॉपिंग अब होगी और भी जबरदस्त। कपड़े, ज्वेलरी, मेहंदी, ईद एक्सेसरीज, सब कुछ एक ही जगह। बकरा मुबारक 2026 UK का बिगेस्ट मल्टी कल्चरल ईद फेस्टिवल। अपनी फैमिली के साथ जरूर आए 26th of May 2026 शाम 6 से रात गए तक। एक्सेलसियर नवाब, लोटस रोड, नॉटिंघम, NG5 1EL। फॉर डिटेल्स कॉन्टेक्ट 07715299779 और 07552 538250.
3: Attention property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Training Academy, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring compliance and safety. At Elite Care Training Academy, we specialize in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704 135 or 07541 181 746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.
4: जी नासिर साहब, सुनाइए कैसे हैं आप और कहां तक पहुंची आपकी दुकान की रेनोवेशन?
5: बिल्कुल ठीक हूं यार, लेकिन दुकान की रेनोवेशन तो कंप्लीट हो चुकी है, बट कोई यार ना फिनिशिंग ना कोई क्वालिटी वर्क, बस मजा नहीं आया। अब सोच रहा हूं कि घर को अपग्रेड करना है, रेनोवेशन का काम है, किससे रابطہ किया जाए?
4: आपने मुगल बिल्डर्स का नाम नहीं सुना?
5: मुगल बिल्डर्स?
4: जी हाँ, मुगल बिल्डर्स। चाहे नया किचन हो, मॉडर्न और स्टाइलिश बाथरूम या फिर पूरा मेकओवर, मुगल बिल्डर्स हैं वो एक्सपर्ट्स जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं।
6: जी, मुगल बिल्डर्स किचन फिटिंग और वर्कटॉप से लेकर बाथरूम टाइलिंग, फिटिंग्स और रेनोवेशंस, पेंटिंग और डेकोरेटिव फिनिशेस, लैमिनेशन, विनाइल और वुडन फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, ड्राई लाइनिंग और जो भी काम बिल्डिंग से रिलेटेड हो, करते हैं ना मुगल बिल्डर्स।
4: मुगल बिल्डर्स स्टार्ट से फिनिश तक सब कुछ करते हैं।
6: मुगल बिल्डर्स, साफ सुथरा काम, बेहतरीन फिनिशिंग और मुनासिब दाम। तो अभी कॉल करें 07440363063 या 07421077999 पर फ्री कंसल्टेशन एंड कोट।
4: मुगल बिल्डर्स, जगह बदले भरोसा तामीर करे।
7: दिस इज अ पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट।
8: यू आर लिस्टिंग 97.1 FM।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: जी हाँ, मराया रेस्टोरेंट में मिडल ईस्ट के असली जायके के साथ अपना दिन शुरू करें। सुबह का आगाज ऑथेंटिक अरेबिक ब्रेकफास्ट के साथ, फ्रेश बेक्ड ज़ातर ब्रेड जो पिघले हुए चीज के साथ और भी लजीज हो जाए, गर्मा गर्म रोटी सीधी ओवन से, क्रीमी हुमस और ताजा तैयार की हुई फलाफिल जो हर बाइट में फ्लेवर से हो भरपूर। और जब आप कुछ वाकई ही यादगार खाना चाहते हैं तो जरूर ट्राई करें मराया रेस्टोरेंट की स्पेशल सिग्नेचर डिश लेजेंडरी स्पेशल मंदी, स्पेशली कुक्ड फॉर अनबीटेबल टेस्ट, खुशबूदार और रिवायती मसालों से भरपूर। चाहे ब्रेकफास्ट हो, ब्रंच, लंच, डिनर या टेक अवे, मराया रेस्टोरेंट हर दफा लाजवाब जायके और बेमिसाल सर्विस के साथ। रोजाना टाइमिंग सुबह 9:30 से रात 10:30 तक। विजिट करें 136-138 अल्फर्ड एंकिन रोड नॉटिंघम या अभी रब्ता करें 07593150669। मराया रेस्टोरेंट, जहाँ हर मील बन जाता है एक यादगार लम्हा।
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ, ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ।

0: सारे इंग्रेडिएंट्स हरियाणा के अपने हैं, चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज़्ज़ा
1: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
0: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी राब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
2: हरियाणा सुपरमार्केट 126132 ग्रैसिंगटन रोड NG8 3P Nottingham Monday to Saturday 8 AM to 8 PM Sunday 10 AM to 8 PM Ariana Supermarket Freshness you can trust Prices you'll love
3: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy. 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham. NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasser. Students Learning and Skills Academy.
4: ख्वाबों जैसी शादी का ख्वाब अब हकीकत में बदलने वाला है। आपकी खुशियों के हसीन लम्हे यादगार बनाने के लिए हयात वेडिंग डिकोर हाजिर है। जदीद तरीन थीम्स, शानदार सेटअप, संगीत, मेहंदी, वेडिंग रिसेप्शन, होम एंड वेन्यू, निकाह पार्टीशन, सेंटरपीसेस, वेलकम साइन, एंगेजमेंट, हाउस लाइटिंग, वॉक अवे, डांस फ्लोर और आपकी पसंद के मुताबिक सजावट, वो भी आपके बजट में। तो देर किस बात की, अभी राब्ता करें हयात वेडिंग डेकोर से और अपनी शादी को बनाएं एक शानदार याद। मजीद मालूमात के लिए कॉल करें 077152।
5: यू आर लिस्टिंग 97.1 FM।

0: This is a public service announcement.
1: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या है यार? सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताज़ा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताज़ा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
4: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
2: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी राब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
5: अरियाना सुपरमार्केट, 126132 ग्रैसिंगटन रोड, NG8 3P, नॉटिंघम, मंडे टू सैटरडे 8 AM to 8 PM, संडे 10 AM to 8 PM। अरियाना सुपरमार्केट, फ्रेशनेस यू कैन ट्रस्ट, प्राइसेस यू विल लव।
6: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
7: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
6: अरे जाने दें, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
7: आय हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
6: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
7: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
8: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
6: Park Foods, जो नाम है मायार का।
9: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide

0: help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level maths, physics, chemistry and biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasser, Students Learning and Skills Academy.
1: रोज रोज सेम रूटीन से बोर हो गए हैं
2: तो अब वक्त है अपना मूड चेंज करने का।
1: वेलकम टू मूड रेस्टोरेंट, जहां हर बाइट के साथ मिलता है परफेक्ट टेस्ट और परफेक्ट वाइब्स।
2: चाहे हो फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट, फैमिली डिनर या मी टाइम, मूड रेस्टोरेंट है हर ओकेजन के लिए परफेक्ट।
1: Delicious premium steak, juicy burgers, creamy pastas और fresh drinks, सब कुछ एक ही जगह।
2: क्योंकि जब खाना हो जबरदस्त तो मूड खुद ही बन जाता है।
1: तो आज ही विजिट करें मूड रेस्टोरेंट, moodnottingham.com, 948 Woodsboro Road, Nottingham, NG35QS।
2: हर दिन को बनाए स्पेशल मूड रेस्टोरेंट,
1: टेस्ट भी वाइब भी।
3: You are listening 97.1 FM.

0: हाँ हाँ बस चिल मारो और सुनते रहो नॉन स्टॉप म्यूजिक।
1: हमने तो जब कलियां मांगी
0: सिर्फ फजा 97.1 FM।
2: You are listening to Radio Fazza on 97.1 FM।

क्या आप जानते हैं मैं कौन हूँ? मेरा नाम है फजा। रोजो शब के धारे में, सुबह शाम के तारे में, वक्त के हमरा चलते हुए, मालूमात भी देते हुए, शोही हूँ, शरारत हूँ, संजीदा हूँ, महारत हूँ। अपनी उदासी दूर करें, बिजनेस को मशहूर करें, आइए आकर मुझसे मिलें। मेरा नाम है रेडियो फजा।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: यूके की सबसे बड़ी चांद रात मल्टीकल्चरल ईद फेस्टिवल आ रही है एक ग्रैंड अंदाज में। सेलिब्रेट करें ईद उल अधा फैमिली, फूड, शॉपिंग और जबरदस्त एंटरटेनमेंट के साथ। लाइव कवाली परफॉर्मेंस पाए उस्ताद रफाकत अली खान 26 मई 2026 शाम 6 बजे से लेट नाइट तक। बकरा मुबारक 2026 ब्रिंगिंग ट्रेडिशन टू लाइफ। डिटेल्स या बुकिंग के लिए अभी कॉल करें 07715299779 या 07552538250। बकरा मुबारक चांद रात मल्टीकल्चरल ईद फेस्टिवल 2026।
2: Attention, property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Fire Safety Solutions, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring you stay compliant with the Regulatory Reform Order 2005 by providing you with a professional risk assessment service. At Elite Care Fire Safety Solutions, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Fire Safety Solutions today at 077 30 791 412 or visit our website www.ecfss.com to secure a no obligation quote today.
3: राहिला बहन बहुत बहुत मुबारक हो, आपके बच्चों ने GCSE और SATs एग्जाम्स बड़े अच्छे नंबरों से पास किए।
4: भाई मुबारक तो हो लासा ट्यूशन सेंटर वालों को, जिनकी मेहनत से बच्चों ने GCSE मैथ्स, इंग्लिश और साइंस में A stars और SATs में ग्रेटर डेप्थ हासिल किए हैं।
3: लासा ट्यूशन सेंटर?
4: जी हाँ, इनकी एक ब्रांच न्यू बेस्फोर्ड NG7 7FY और दूसरी ब्रांच स्नेंटनडेल NG2 4LG में है।
3: लेकिन मैं तो यूनिवर्सल क्रेडिट पे हूँ और फुल ट्यूशन फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकता।
4: मसला ही कोई नहीं, लासा ट्यूशन सेंटर नॉटिंघम ऑफ स्टेट रजिस्टर्ड है और यूनिवर्सल क्रेडिट वालों के लिए 85% डिस्काउंट अवेलेबल है।
3: फिर तो मैं आज ही उनसे रब्ता करता हूँ।
5: जी हाँ, आज ही रब्ता कीजिए लासा ट्यूशन सेंटर 07968046444 या 01159168231। कुछ बन गए आज तो कल काम आएगा।

0: ऐसे प्रेम।
1: इट्स कमर्शियल टाइम।
2: तू को जा मन को जा।
3: रूह को महका देने वाली एक यादगार शाम, लाइव कव्वाली परफॉर्मेंस, गेस्ट ऑफ ऑनर उस्ताद रफाकत अली खान एंड हमनवा ऑन स्पेशल इवेंट बकरा मुबारक 2026। इश्को सुरूर की महफिल कव्वाली नाइट 26 मई 2026 शाम 6 बजे से रात गए तक। तशरीफ लाना मत भूलिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। एक्सेलसियर नवाब, लोटस रोड, नॉटिंघम, NG5 1EL। फॉर डिटेल्स प्लीज कॉन्टेक्ट 07715299779 और 07552538250। UK's biggest multicultural Eid festival, Bakra Mubarak 2026.
4: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
5: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
4: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
5: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
4: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
5: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
4: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गए की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
6: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
3: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रابطہ करें 0115-929-8484 या 0770210793।
7: Ariana Supermarket, 126132, Grassington Road, NG8 3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
8: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
9: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
8: अरे जाने दें, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
9: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
8: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
9: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
10: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
8: Park Foods, जो नाम है मायार का।
11: Discover the authentic taste of the Middle East at Mariah Restaurant in Tooting with a breakfast experience full of rich Arabic flavors. Enjoy freshly baked manioush straight from the oven, topped with delicious melted cheese, warm traditional breads, creamy hummus and crispy fresh falafel prepared daily.
12: And when you're ready for something truly unforgettable, treat yourself to Mariah's signature dish, the legendary Especial Mandi. Slow-cooked, aromatic and rich with traditional spices.
11: From breakfast and brunch to lunch, dinner and takeaway, Mariah Restaurant brings quality food and excellent service together under one roof. Open daily from 9:30 a.m. till 10:30 p.m.
12: Visit us at 136-138 Alfreton Road, Nottingham.
11: Or place your order today on 0759-315-0669. Mariah Restaurant.
13: You're listening to Radio Fazal 97.1 FM. Enjoy songs in mesmerizing voice of legendary singer Kumar Sanu. Only in Dedication Hour. Kumar Sanu.

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: ओए खुशियां मनाओ, भंगड़े पाओ, भंगड़े पाओ, भंगड़े पाओ, भंगड़े पाओ।
2: आज तो बहुत खुश लग रहे हैं, खैर तो है।
1: मेरी बीवी का वीजा हो गया जी।
2: ओहो मुबारकबाद, बहुत जल्दी आ गया।
1: सारी नसीब दी गल है, मैं लोकल वीजा मायरीन दी मदद ली सी जी।
2: उनका नाम ही बता दें, हमें भी कभी जरूरत पड़ सकती है।
1: AMH सॉलिसिटर्स। और कौन? ओ वधिया ने, दोस्ताना माहौल, तेज ते जल्दी कम कर दे रहे। सोने ते सुहागा ये क्यों, हर तरह का वीजा एक्सटेंशन, इनडेफिनेट लीव टू रिमेन और सिटीजनशिप एप्लीकेशंस भी कर दे ने।
2: चलें उनका पता भी बता दें, आपको तो जुबानी याद होगा।
1: हाँ जी क्यों नहीं, नॉटिंगम रोड, न्यू बेसफोर्ड, नॉटिंगम।
2: जबरदस्त, मैं उनसे राबता करूंगी अपनी फैमिली के वीजा के लिए। नंबर क्या है?
1: लो जी ओ भी जुबानी याद है, 0115-671-3677। प्योर जिम दी बिल्डिंग विच ने, मुफ्ता मशवरा लो जी।
3: AMH Solicitors, Immigration Lawyers at Sovereign House, 184 Nottingham Road, New Baysford, Nottingham NG7 7BA. Large free car park available, or call them on 0115-671-3677.

0: ईद उल अधा की खुशियों को ग्रैंड स्टाइल में सेलिब्रेट करें। ZK इवेंट्स और रेडियो फजा ला रहा है इस चांद रात को जबरदस्त इवेंट, बकरा मुबारक 2026, एक यादगार चांद रात एक्सपीरियंस। 26th of May, 6 PM टिल लेट, सिर्फ शॉपिंग नहीं पूरी फैमिली के लिए एंटरटेनमेंट का धमाका, फूड स्टॉल्स, फैमिली फन, ईद वाइब्स और नॉन स्टॉप एक्साइटमेंट। तो इस चांद रात मिलते हैं बकरा मुबारक 2026 में, एक्सेलसियर नवाब, लोटस रोड, नोटिंगम, NG5 1EL।
1: बड़ी ईद की बड़ी खुशियों में आपके साथ साथ मराया रेस्टोरेंट, मराया रेस्टोरेंट की जानिब से तमाम अहले नॉटिंगम को बड़ी ईद की बड़ी खुशियां, बहुत बहुत मुबारक। तकबलुल्लाह मिन्ना व मिनकुम।
2: प्लानिंग अ वेडिंग, रिसेप्शन और स्पेशल सेलिब्रेशन? डिस्कवर एक्सेलसियर नवाब, नॉटिंगहम्स ब्रांड न्यू रेनोवेटेड बैंक्वेटिंग वेन्यू। A beautifully designed indoor marquee concept featuring sparkling traditional chandeliers, stunning LED lighting throughout, and elegant decor.
3: Enjoy venue hire, tables and chairs with table linen, chair covers, centerpieces, stage and walkway decor, a delicious three-course meal, drinks, professional waiter service, and a dedicated supervisor on the day.
2: Fully air-conditioned with modern kitchen facilities. A spacious foyer reception area located just 1 mile from Nottingham City Center at 5-7 Lourdes Road, NG51EL.
3: Excelsior Nawab, where your special moments become unforgettable.
4: क्या आप जानते हैं मैं कौन हूँ? मेरा नाम है फजा।

0: तो शब के धारे में, सुबह शाम के तारे में, वक्त के हमरा चलते हुए, मालूमात भी देते हुए, शोखी हूँ, शरारत हूँ, संजीदा हूँ, महारत हूँ, अपनी उदासी दूर करें, बिजनेस को मशहूर करें, आइए आकर मुझसे मिले, मेरा
1: You are listening to Radio Fazal 97.1 FM. Enjoy soulful songs of Rafi only on Dedication Hour.

क्या आप जानते हैं मैं कौन हूँ? मेरा नाम है फजा। रोजो शब के धारे में, सुबह शाम के तारे में, वक्त के हमरा चलते हुए, मालूमात भी देते हुए, शोही हूँ, शरारत हूँ, संजीदा हूँ, महारत हूँ। अपनी उदासी दूर करें, बिजनेस को मशहूर करें, आइए आकर मुझसे मिलें। मेरा नाम है रेडियो फजा।

0: It's commercial time.
1: हेलो नॉटिंघम, हम एक डेडिकेटेड लोकल डॉक्टर और यंग फादर के लिए एक अर्जेंट स्टेम सेल डोनेशन की अपील कर रहे हैं, जो इस समय अपनी जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। उन्हें अर्जेंटली एक लाइफ सेविंग स्टेम सेल ट्रांसप्लांट की जरूरत है, लेकिन अफसोस अभी तक उनका साउथ एशियन मैच कहीं नहीं मिला है। हम पूरी साउथ एशियन कम्युनिटी से गुजारिश करते हैं कि प्लीज आगे आए और इस फादर की मदद करें। हम एक डोनर ड्राइव होस्ट कर रहे हैं ICCA सेंटर हकनल रोड पर ऑन वेंसडे 27 मई को शाम 6 बजे से 7:30 बजे तक। हम आपका एक चीक स्वाब लेंगे मुंह के अंदर से और फिर उसे टेस्टिंग के लिए भेज देंगे। हमें उम्मीद है कि आप वेंसडे आकर इस फैमिली की मदद जरूर करेंगे। शुक्रिया।
2: चांद रात की शॉपिंग अब होगी और भी जबरदस्त। कपड़े, ज्वेलरी, मेहंदी, ईद एक्सेसरीज, सब कुछ एक ही जगह। बकरा मुबारक 2026 UK का बिगेस्ट मल्टी कल्चरल ईद फेस्टिवल। अपनी फैमिली के साथ जरूर आए 26th of May 2026 शाम 6 से रात गए तक। एक्सेलसियर नवाब, लोटस रोड, नॉटिंघम, NG5 1EL। फॉर डिटेल्स कॉन्टेक्ट 07715299779 और 07552 538250.
3: Attention property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Training Academy, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring compliance and safety. At Elite Care Training Academy, we specialize in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704 135 or 07541 181 746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.
4: जी नासिर साहब, सुनाइए कैसे हैं आप और कहां तक पहुंची आपकी दुकान की रेनोवेशन?
5: बिल्कुल ठीक हूं यार, लेकिन दुकान की रेनोवेशन तो कंप्लीट हो चुकी है, बट कोई यार ना फिनिशिंग ना कोई क्वालिटी वर्क, बस मजा नहीं आया। अब सोच रहा हूं कि घर को अपग्रेड करना है, रेनोवेशन का काम है, किससे रابطہ किया जाए?
4: आपने मुगल बिल्डर्स का नाम नहीं सुना?
5: मुगल बिल्डर्स?
4: जी हाँ, मुगल बिल्डर्स। चाहे नया किचन हो, मॉडर्न और स्टाइलिश बाथरूम या फिर पूरा मेकओवर, मुगल बिल्डर्स हैं वो एक्सपर्ट्स जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं।
6: जी, मुगल बिल्डर्स किचन फिटिंग और वर्कटॉप से लेकर बाथरूम टाइलिंग, फिटिंग्स और रेनोवेशंस, पेंटिंग और डेकोरेटिव फिनिशेस, लेमिनेशन, विनाइल और वुडन फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, ड्राई लाइनिंग और जो भी काम बिल्डिंग से रिलेटेड हो, करते हैं ना मुगल बिल्डर्स।
4: मुगल बिल्डर्स स्टार्ट से फिनिश तक सब कुछ करते हैं।
6: मुगल बिल्डर्स, साफ सुथरा काम, बेहतरीन फिनिशिंग और मुनासिब दाम। तो अभी कॉल करें 07440363063 या 07421077999 पर फ्री कंसल्टेशन एंड कोट।
4: मुगल बिल्डर्स, जगह बदले, भरोसा तामीर करें।
7: आपके दिल की धड़कन रेडियो फजा 97.1 FM।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: जी हाँ, मराया रेस्टोरेंट में मिडल ईस्ट के असली जायके के साथ अपना दिन शुरू करें। सुबह का आगाज ऑथेंटिक अरेबिक ब्रेकफास्ट के साथ, फ्रेश बेक्ड ज़ातर ब्रेड जो पिघले हुए चीज के साथ और भी लजीज हो जाए, गर्मा गर्म रोटी सीधी ओवन से, क्रीमी हुमस और ताजा तैयार की हुई फलाफल जो हर बाइट में फ्लेवर से हो भरपूर। और जब आप कुछ वाकई ही यादगार खाना चाहते हो तो जरूर ट्राई करें मराया रेस्टोरेंट की स्पेशल सिग्नेचर डिश लेजेंडरी स्पेशल मंदी, स्पेशली कुक्ड फॉर अनबीटेबल टेस्ट, खुशबूदार और रिवायती मसालों से भरपूर। चाहे ब्रेकफास्ट हो, ब्रंच, लंच, डिनर या टेक अवे, मराया रेस्टोरेंट हर दफा लाजवाब जायके और बेमिसाल सर्विस के साथ। रोजाना टाइमिंग सुबह 9:30 से रात 10:30 तक। विजिट करें 136-138 अल्फर्ड डेंकिन रोड नॉटिंघम या अभी राब्ता करें 07593150669। मराया रेस्टोरेंट, जहां हर मील बन जाता है एक यादगार लम्हा।
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या है यार? सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्रे पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्रे पिज्जा
4: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
2: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी राब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
5: Ariana Supermarket, 126132 Grassington Road, NG8 3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
6: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11+, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159-168-231 or 07968-046-444. Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasser, Students Learning and Skills Academy.
7: ख्वाबों जैसी शादी का ख्वाब अब हकीकत में बदलने वाला है। आपकी खुशियों के हसीन लम्हे यादगार बनाने के लिए हयात वेडिंग डिकोर हाजिर है। जदीद तरीन थीम्स, शानदार सेटअप, संगीत, मेहंदी, वेडिंग रिसेप्शन, होम एंड वेन्यू, निकाह पार्टीशन, सेंटर पीसेस, वेलकम साइन, एंगेजमेंट, हाउस लाइटिंग, वॉक अवे, डांस फ्लोर और आपकी पसंद के मुताबिक सजावट, वो भी आपके बजट में। तो देर किस बात की, अभी राब्ता करें हयात वेडिंग डेकोर से और अपनी शादी को बनाएं एक शानदार याद। मजीद मालूमात के लिए कॉल करें 07715-299-779 और विजिट अस एट
8: hayatweddings.co.uk।
9: क्या आप जानते हैं मैं कौन हूँ? मेरा नाम है फजा। रोजो शब के धार

तारे में, सुबह शाम के तारे में, वक्त के हमरा चलते हुए, मालूमात भी देते हुए, शोही हूँ, शरारत हूँ, संजीदा हूँ, महारत हूँ, अपनी उदासी दूर करें, बिजनेस को मशहूर करें, आइए आकर मुझसे मिलें, मेरा नाम है रेडियो फजा।